तो आपने सुने लता जी ने आपसे कहें कि उन्हें कितना मज़ा आ रहा है ये शानदार गीत हमने निकाले फिल्म राजा जानी में से नेक दिन त्वें से ही तक का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और अभी हमने गीत चलाए थे हाथी मेरे साथी की, वो भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है, ये भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये रोमांटिक ड्यूएट सॉन्ग इस तरह से।

0: ये टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाए, कुछ ना कहो, साधना सरगम और अभी शिव जी नहीं, साधना सरगम और शान, साधना सरगम और शान, शंकर एहसान लोई के साज पर यह टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया। वो चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, फिल्म 10 नंबरी तो आप देखे होंगे, मनोज कुमार की फिल्म है, मुकेश जी की आवाज़ में और लता जी। चलो सुनते हैं इन दोनों को कितना दर्द है मुझे भी नहीं पता, मिलकर सुनते हैं।
1: मुझे दर्द रहता है,
0: अच्छा?
1: दिल में दर्द रहता है
0: इतना?
2: अच्छा?
1: मुझे

हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर गीत हम आपको सुनाए हैं लता जी और मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। आपने बीच बीच सुने होंगे यह गीत कि दर्द मिटने का क्या दवा है, क्या सुझाव है, क्या आदफिस है, बस गले में रस्सी बांध लेना और खींचवा लेना। बहरहाल ये मज़ेदार गीत हम आपको सुनाए ओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। ते पे सत्ता

मैं आग दिल में लगा दूंगा, एवरग्रीन किशोर कुमार फिल्म सत्य में सत्य पे सत्ता में से निकालकर आरडी बर्मन के साज पर हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए आप ही हैं और मैं भी हूँ, और चलो हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से। और फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म शिकार में से निकाल रहे हैं नेघंतीन अख्तन सस्तक 1968 का ये गीत है। शंकर जय किशन के साज पर

तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, फिल्म शिकार में से निकाल लेने की थी। अख्तन सस्तक का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने आपको सुनाए। चलिए, जानी दुश्मन वो भूत अख्तक फिल्म आपने अवश्य देखे होंगे, संजीव कुमार का। जानी दुश्मन में से निकाल रहे हैं, जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर लता जी चलिए आपको सुना रही है इस तरह से फिल्म जानी दुश्मन। निगतिन नई खनन से 79 का ये गीत।

लगा जी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर आपको सुनाए नेक दिन नेक नसीब का ये गीत फिल्म जानी दुश्मन में से निकाल कर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है

रमा रामा गजब होई गवारे। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो जी हाँ, आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं।

तुम ही तो हो जिसका सपना मैंने देखा था। ये शानदार गीत चला ओवरफाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप भी हैं, मैं भी हूँ, मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ?

महेंद्र कपूर जी और लता जी, ये दोनों मिल के बड़ा आदमी से में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए हैं। और साज है चित्रगुप्त जी का, चित्रगुप्त के साज पर ये गीत पेश हुआ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, आप भी हैं और मैं भी, जैसे मैंने कहा। तो क्या ख्याल है कि हम आपको ये धमाकेदार गीत सुनाए हैं।

नथनिया हाले तो बड़ा मजा होए, ये चटपटा चुटकुला गीत हम आपको सुनाए हैं फॉर हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ये देखते हैं, ये लॉफिन टोक्यो का है। जी हाँ, लॉफिन टोक्यो इस तरह से है।

फिल्म लव इन टोक्यो में से निकाल कर ये प्यारा गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए ये गीत भी आपको सुना देता हूँ, एवरग्रीन किशोर कुमार। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर

जाने मन एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने पेश की। आप भी हैं और मैं भी हूँ। अच्छा, तो अगर आप दोनों हम दोनों हैं आप श्रोताओं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊँ। ये गीत के बोल थोड़ा, इसे सुनिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सुन लीजिए।

फिल्म गैम्बलर में से निकाले हैं निगत एन से इवन तक का, ये देवानंद का गैम्बलर है, ग्रेट गैम्बलर नहीं, गैम्बलर निगत एन से इवन तक का ये गीत लता जी की आवाज़ में और एफ एन ग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, जी हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर आनंद राज आनंद

तो लीजिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और ये गीत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बस आप इसे सुनिए और निर्णय कीजिए क्या कैसा गीत है। इस तरह से आ रहा है।

सुरेश वाधिकर जी और लता जी ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं, जबकि आप सुन रहे हैं ओ मैं चला रहा हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दनहा शहर से। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये गीत है, हाँ सुनिए, रोना लैला जी, इस तरह से

सारी दुनिया के वीरां पाओगे जब हम नहीं होंगे, ये तो बात सच है। ऐसा होता है ज़िंदगी में। और हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम में रोना लैला जी की आवाज़ में। तो चलिए रोना लैला जी के बाद हम आपको सुना रहे हैं ये आवाज़, आपके लिए भी एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ है, फिल्म फिल्म फिल्म निका में से निकाले हैं।

वाह क्या बात है, फंसा भी है जमा जमा। सलमा आगा की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

दिल ने ये क्या सुन लिया, आंखों आंखों में तूने ये क्या कहा। ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश किए। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये धमाकेदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

डाकू पे डाका डाले तो बड़ा मजा हो, शमशाद बेगम की आवाज में आपको सुनाया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए शमशाद बेगम जी के बाद हम आपको सुनाते हैं रफी साहब की आवाज़।

करते हैं प्यार समझ में आया चली हो कहा देखो इधर हम भी करते हैं प्यार समझ में आया।

0: तो हम भी करते हैं प्यार समझने आया।
1: फिल्म कॉलेज गर्ल निगेती एन एफ एफ रफी साहब की आवाज़ में आपको सुनाएगा यहाँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। जी हाँ, तो क्या ख्याल है रफ़ी साहब के बाद हम आपको ये सुनाते हैं। हाँ, निगेती द्रीन तख्त एन एफ एफ तक से सीधे चलते हैं द्रीन तख्त। जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी आवाज़ है, जानी पहचानी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो सुन लीजिए।

अगर तुम ना होते हमें जीने की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी निगत इंद्रीन तख्त का ये फिल्म है, हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म तो टाइटल सॉन्ग है ये है अगर तुम ना होते निगत इंद्रीन तख्त का। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, अगर आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर हम आपको ये सुनाते हैं। जी हाँ सुनिए, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी तो नहीं है लेकिन फिर भी है।

क्या बात है, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी भी नहीं है। आपको सुनाया गया फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, हमने पेश की ये शानदार गीत। चलो यहाँ से पेश करते हैं, जी हाँ, चलिए आपका स्वागत करते हुए फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ, कहाँ गया मेरा गीत, और वो ये है इस तरह से।

0: से तौबा।
1: हाँ वाह क्या बात है, आपने शायद शब्द सुने होंगे लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर ये शब्द आप नहीं सुने होंगे तो मुकेश जी जो है वो प्यार करता है लेकिन रफ़ी साहब प्यार के ख़िलाफ़ है, बस यही सवाल और जवाब इन लोगों में था। मुकेश जी प्यार कर रहा था और रफ़ी साहब उसका ख़िलाफ़ था। ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, ये जी हाँ ये भी एक जानी पहचानी गीत, लंबा चौड़ा गीत है, 6.5 मिनट का, तो सुनिए ये गीत कैसा है।

तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आया है, आप तो ऐसे ना थे, फिल्म का नाम है और हमने पेश की ओवरफाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत। जी हाँ, अगला गीत है मैती मुकेश, मैती मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।

माइकी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दो होंठ ले, ये गीत पेश किया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। हाँ, अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से माइकी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नई गिनती फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं थी मुकेश, द हार्ट ऑफ अफिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी और रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकती एन सैफ का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फिल्म अली बाबा एंड द 40 थीव्स यानी अली बाबा और 40 चोर। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, गीत

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।

0: लगा लीजिए ना।
1: बांधिए बांधिए।
0: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
1: हाँ? किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
0: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
1: जरूर आइए जरूर आइए।
0: चलिए
1: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा। तवारीख गवाह है, यानी खुशकिद ने इतिहास गवाह है। अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। और ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेक दिन ससन सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार डुएट आपको सुनाए हैं ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है रफ़ी साहब का, ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य, और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाएं, निकती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए यह शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओ पी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाएं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.55fm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार द्वेद हमने पेश की ओपर फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।

भक्तों, राम कथा एक दिव्य कथा है। ये कथा कलयुग में मानव के मलिन मन को निर्मल बनाने वाली है, पावनकारी कथा है। राम कथा एक जीवन दर्शन है। राम कथा में भाग्य का निराला खेल वर्णित है, तो मैं भाग्य के इसी निराले खेल को एक भजन का रूप दिया है।

जग की रचना रचने वाली तेरे हाथ में, इस भवसागर में है तेरे नाम से बेड़ा पार, फिर भी तेरे द्वार से मैया खाली कोई न जाए, खाली कोई न जाए।

प्यारे, मैं तुम्हें क्यों मना रही हूँ, तुम्हें क्यों बुला रही हूँ, तेरी बार बार मिन्नतें क्यों कर रही हूँ। तूने अपने नैनों के माध्यम से जो मुझे पिलाई, उसका नशा इतना बढ़ गया कि मेरी प्यास बढ़ती ही चली गई।

हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हर रोज की तरह हमेशा की तरह आपसे आज भी होगी कुछ प्यारे प्यारे बातें और सॉन्ग्स हम चलाएंगे जो आपको पसंद है, जहां तक ये आवाज पहुंचे और हर एक सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार अदाए बरस और सत्यकाल हो। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सारजू, जो आपके साथ देंगे और कुछ पुराने पुराने गाने हम आप लोग के जरूर सुनाएंगे। जहां पे जिस घर में दुख है या मातम है, पूरा फाहुन टीम उसका दुख में शामिल है। जहां पे खुशी है वहां पे भी हम साथ है। दुख और सुख में हर एक को सदा साथ देना चाहिए, वैसे हम भी आपके साथ है। चलो दोस्तों, हम प्रोग्राम को आप चलाएंगे। एक घंटे तक हम कुछ हिले मिले जुले गीतों से आपको जरूर सुनाने वाला है। मिलके हम सब सुनेंगे आज का प्रोग्राम और हर एक जरूर इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन के रख चुका है। मूवी हम सफर, जिसमें जितेंद्र शर्मिला टैगोर ने काम किया, लता मंगेशकर और मुकेश ने इस गाने को गाया है। देखा जाए इसका म्यूजिक जो बजाया गया है वो ही आनंद बख्शी और लाइरिक्स आनंद बख्शी और म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी। हम मिलके सुनते हैं किसी राह पे किसी मोड़ पर। इसमें थोड़ा से कुछ गलत हो गया है देखा जाए तो, देखते क्यों आवाज नहीं आता है इसमें से।

0: सभी को राम राम नमस्कार और ढेर सारा दुलार पहुंचे, जहां तक ये आवाज पहुंचे वहां तक हमारा पैगाम पहुंचे और ढेर सारी मोहब्बत पहुंचे। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सारजू, जो कुछ हिले मिले जुले गीतों से हम आप लोग के सेवा करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन करके लाए हैं, कुछ पुराने गाने हैं, और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर आज का रेडियो प्रोग्राम फाहून द्वारा ज़रूर पसंद आएगा। आप सब चुन है द एवरग्रीन लव लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, और मैंने चुन करके रखा है मूवी फिल्म हम सफ़र के एक ऐसा गीत है जो लता मंगेशकर और द नाइट मुकेश ने गाया है, जो करोड़ों का दिल जीत चुका है, जीत लिया था, जीते जाते भी है। क्या आवाज़ है मुकेश और लता मंगेशकर का, आवाज़ है किस राह में किस मोर पर, लता मंगेशकर मुकेश लाइरिक्स, जो हाथ और कलम चलाया गया है, जो सिहाही से लिखा गया है वो आनंद बख्शी है, म्यूजिक सजा करके हम लोग तक लाया है कल्याण जी। आनंद जी, हम आप लोग के मिल के सुनाते हैं, जितने लोग प्रोग्राम को सुनते हर एक के लिए ये गीत मैं पेश करता हूँ, नामोस रेडियो फाहून।
1: मैंने देखा नहीं, तुम बंसी भी बजाते हो?
2: हाँ हाँ, सुनाओ।
1: अरे अरे, अभी नहीं, ये तुम भूल गए हो, तुम छुप कर जा रहे हो।
2: खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था।
1: खुशी? किस बात की खुशी?
2: न जाने क्यों।
1: राजू, तुम बहुत अच्छे हो।
2: बापू और उस्ताद के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे अच्छा कहा।
1: तुम्हारा अपना और कोई नहीं है?

मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मूवी मेरे हम सफ़र, किसी राह पर किसी मोड़ पर। चलो दोस्तों, अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, रख दिया है आपके लिए, मूवी हीरा हीरा हीरा तमन्ना एल्बम, मूवी हीरा तमन्ना है और सिंगर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर। फिर से लाई दीक्षा आनंद बख्शी की और देखा जाए म्यूजिक है लेबल शरगमा। चलो दोस्तों, हम आपके सुनाते हैं जिसमें काम किया है देवानंद और जीना तमन्ने। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।

जादोसो मूवी हीरा पन्ना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज है। ब्याह सूर्य थे दोस्तों, आनंद बख्शी का लिरिक्स, और आप जानते ही राहु देव परमन का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं प्रोग्राम। आप ही तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं हैं, और आप सब चून हैं द एफ अगेन लव फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल जरजू। हम आगे प्रोग्राम चलाते हैं। मुकेश जी का एक गाना हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं, जो प्यार से गाया है। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मूवी कति पतंग तक का है, और देखा जाए म्यूजिक डायरेक्टर है एर्दे बर्मन। एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, और हम आपके नाम करते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम को सुनते ही जितने गाना या गीत हम चलाते हैं बस आप सबके नाम है। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत पसंद करते, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऐसे ही सुनते रहना, ये गीत भी आप लोग के नाम है, मूवी कति पतंग के, जिसमें जितेंद्र आशा परीक ने काम किया है।

0: दीवान।
1: जी हाँ दोस्तों, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मूवी कति पतंग तक का ये फिल्म है जिसका आपने भी गीत को सुना है, और जो जो सुनता है हर एक गीत जो मैं चला रहा हूँ बस आप सबके नाम है। चलो दोस्तों, हम अगले संस को लगा चुके हैं अगले गाने को, और देखा जाए देखिए तो कौन मूवी दो कल्याण नीलकंठ नाथन शस्त्र का है यार। और देखा जाए तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, कभी कभी हो जाता है चना, नज़र भी खफा हो जाते हैं लोग से जुदा हो जाते हैं तो क्यों खफा नहीं हो सकता है। पद्माश्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का आवाज़ है, म्यूजिक डायरेक्टर रवि। हम आपको सुनाते हैं, मिल के सुनेंगे तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई।

जी दोस्तों, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, पद्मश्री मोहम्मद रफी ऑफ द क्वीन, लता मंगेशकर की आवाज। म्यूजिक जिसने सजाया है वो रफी है और लाइरिक्स साहिर। मूवी दो कल्याण निखंतिन अख्तर श्रेष्ठ का, जिसमें माला सिन्हा और विश्वजीत ने काम किया है। चलो दोस्तों, अगले गीत को मैंने चुन पे रख चुका हूँ। देखा जाए, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। मूवी जिंदगी और तूफान निखंतिन फैफन जैफन तक का है यार, और गाने वाला वही है मुकेश लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक है और लाइरिक्स राम अवतार। चलो हम मिल के सुनते हैं

जी हाँ, हमारे सुनने वाले एक हंसती की आंचल का मुझे प्यार मिले मुकेश की आवाज थी। चलो दोस्तों आगे ले चलते ही, ना जाने क्या हूँ, बहुत विशाल गाना है यह गाना है लता मंगेशकर का, मूवी दर्द है नीकंती एनन तख्त का, न जाने क्या हुआ जो तुम छोड़ लिया छू लिया। ये गाना हम सोच रहे सब कोई जाने और सब कोई के मुँह लगी, लता मंगेशकर की आवाज़ है और सब कोई सुनो खोई मिल के फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप सब चोर है दोस्तों, मिल के सुनेंगे न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। मूवी दर्द 1981 का, जिसमें हेमा मालिनी और राजेश खन्ना ने काम किया है। तो चलो दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं मूवी प्रोफेसर 1982 का, जिसमें सामी कपूर और कल्पना ने काम किया है और गायक और गायिका है पद्मश्री मोहम्मद रफी और दक्षिण लता मंगेशकर, म्यूजिक शंकर जयकिशन और लाइरिक्स से साई लेंद्रा।

जी हाँ प्यारे सुनने वाले, मैं चली मूवी प्रोफेसर 1962 का चलो आगे ले चलते, दूरी ना रही कोई, लता मंगेशकर की आवाज है। और देखा जाए जी हम दोस्तों, लता मंगेशकर म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लाइली से कफीन आजाद मुत के जो लिखा गया है, हाथ और कलम उसी ने चलाया है। चलो मिलके सुनते हैं रेडियो फोन के जरिए से।

लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है बयान नहीं। ये एक नाम है जिसे सुनते ही मेरे दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। टू मी शी इज इथीरियल, समवन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, लार्जर देन लाइफ, नो लेस देन अ गॉडेस, अ देवी। दिस वन नेम इवोक्स अ मिलियन फीलिंग्स इनसाइड मी। आई हैव कोल्ड फीट, वीक नीज, अ नॉट इन माई स्टमक, I smile on my lips and tears in my eyes. In other words, I feel alive when I hear this name, Lata.

जी हाँ दोस्तों, तुम मुझ में समा जाऊँ, मैं तुझ में समा जाऊँ। द क्वीन ऑफ लता मंगेशकर की आवाज़ थी और कर्तव्य मूवी का नाम है और रेखा और धर्मेंद्र पाजी ने इसमें काम किया है। चलो दोस्तों, हम आप लोग के सुनाते हैं तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है असर।

0: तेरे इष्ट का मुझ पे हुआ है असर। आशा भोसले पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज से मूवी नागिन निकली सेशन ज़ैफ़न तक का है। ठीक है दोस्तों, मैंने वक्त से पूछा मेरा क्या कसूर था। वक्त हंस के बोला कसूर तो कुछ बड़ा नहीं था, बस तूने हर किसी को दिल से अपना समझ लिया और जिए इस दुनिया में सबसे बड़ा कसूर होता है। जहां हर रिश्ता दिल से नहीं निभाया जाता है, हाय तुम दिल से जीते रहा है और लोग मतलब से याद करता है, दिल से नहीं। ये ऐसा होता है हमारे प्यारे सुनने वाला, शायद बोलने में कुछ गलत हो गया। ये ऐसा होता है। आपकी खिदमत में मैं हूँ अनिल जारजू और आप सब द एफगे लॉ फाहौन हिंदुस्तानी पे चून है। देखा जाए तो अभी हम आप लोग के
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdi bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maar

सुंदर सा हनुमान चालीसा आपके लिए पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये भी इतनी फास्ट, इतनी चटक, जो आप सुनते ही और इसे पसंद करने लगे होंगे। कुछ भी हो जाए मेरे दोस्त, क्यों कुछ भी हो जाए, जैसे भी विपरीत परिस्थितियां हो, तुम हारना नहीं। और याद रखना, तुम्हारा कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये सुंदर से बात है एक दादा दादी और एक पोता के। दादी बोली, आंगन में मोर पंख मिला है। दादी बोली कि आंगन में मोर पंख मिला है, तो दादा बोला, जरूर मोर आया होगा। पर पोता बोला, हो सकता है कि कृष्ण जी आया होगा। ये दादा दादी और पोता का विचार है एक मोर पंख पर जो आंगन में मिला।

शकी और कुमार शानू जी की आवाज़ में ये सुंदर सा गीत, हाँ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग और नए सॉन्ग जो रिलीज किया गया है, पेश किया गया है आपके वास्ते। हम वो पीढ़ी है, हम वो पीढ़ी है जिसकी ना हंसी असली है ना खुशी, जिसके ना ख्वाब पूरे हुए और ना ख्वाहिशें। हम अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं पर किसी को एहसास तक नहीं होते हैं। हम अपनी हंसी से अपने दर्द और तकलीफ छुपा लेते हैं। हमें तजुर्बे हमारी उम्र से भी ज़्यादा है, हम अपने अंदर कई जंग लड़ रहे हैं, इसलिए हमें समझना आसान नहीं है।

सुंदर सा गीत मेरे प्यारे सुनने वालों की, भुलान नहीं देना जी, भुलान नहीं देना, आप वाकई में भुलान नहीं देना, क्योंकि यहाँ से बैठ के मैं आपके सेवा कर रही हूँ ये आशा उम्मीद के साथ कि आप जरूर से उस पार बैठकर और सुन रहे हैं, लुफ्त उठा रहे हैं। यही आशा उम्मीद है कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में होंगे। जैसे भी परिस्थितियां हो मेरे प्यारे सुनने वालों, उसमें जरूर से खुशियां ढूंढो, खुशियां ढूंढो, खुशी से मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आएगा और जो गम है ना वो दूर हट जाएगा। गम भी डर के भाग जाएगा, ये सोचेंगे कि यहाँ पे मेरा क्या काम है, तो हंसो मुस्कुराओ,

गणपति बापा डीजे रिमिक्स आपके लिए, डीजे रिमिक्स आपके लिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये दिन आपको, ये पल आपको बहुत सारे खुशियाँ दे। कहते हैं कि जब जब एक बेटी जन्म लेती है तो वो केवल एक परिवार में नहीं, जब बेटी जन्म लेती है तो वो केवल एक परिवार में नया जीवन ही नहीं लाती, बल्कि अपने साथ ईश्वर की असीम कृपा, रहमत और बरकत भी लेकर आती है। उसकी किलकारियों से घर का आंगन महक उठता है, उसके मासूम कदमों से आशीर्वाद का प्रभाव होता है। बेटी केवल माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि उनके दुआओं का फल और उनके जीवन के सबसे सुंदर पूजनीय होती है। जिस घर में बेटी होती है वहाँ प्यार, अपनापन और सुकून का उजाला कभी कम नहीं होता। सच ही कहा गया है बेटी बोझ नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार होता।

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert, Jubin Nauteliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubin Nauteliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1701 of mail naar bglreizen@outlook.com.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Sakuna Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdy bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
3: Har dil se hamara nata hai, har dil se hamara rishta hai, aaj bhi hamesha ki tarah humse tumse ek nata ban chuka hai. Jahan tak ye hamara paigham pahunche, wahan tak hamara प्यार पहुँचे और ढेर सारा दुलार पहुँचे. मैं हूँ अनिल सरजू, जो आज अभी से लेकर 9 बजे से 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा. हम ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जहाँ पे मातम है, दुख है, काफ़ी दुख हो चुका है. सुरीनाम में तीन जल के मर चुका है और एक के ऊपर पेड़ गिर गया है मशीन पे. हर एक घर में उन सबको हम बहुत अच्छी तरफ से जानते हैं, इसलिए हम कहते हैं हर एक दिल, हर एक घर में जहाँ पे मुसीबत है, दुख है, मातम है, सुख है, सबको भगवान सहन शक्ति दे, इतना सहन शक्ति देते हर एक चीज सह सके और रह सके, क्योंकि काफ़ी दुख हो चुका है सूरीनाम देश में और जहाँ पे सुख है। इन हर दुख और सुख में हमारा पूरा टीम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और हमारा जितना लीडर है, जितना उम्र ऊपर है, हमारा डायरेक्टर है कुमार किराव है, हम सब आपके दुख में शामिल है। जहाँ पे दुख है हर एक जगह पे इस वक्त दुख है, हर एक देश में दुख है, सुख है, खुशी है, हर एक दुख सुख खुशी में हम पूरा टीम से आपके साथ है। भगवान इसे सहन शक्ति दे और सब हर एक दुख सहने के लिए इतना ताकत दे कि हर एक दुख से वो मुक्त हो जाए और अपना जिंदगी को फिर से चलाने लगेगा। ठीक है दोस्तों, मैं बताना फिर से एक बार चाहता हूँ कि 9 से 12 तक हमारा प्रोग्राम रहेगा आपके साथ, और कुछ पुराने गाने मैं आप लोग के आज सुनाने वाला हूँ, क्योंकि मौसम की तरफ देखा जाए तो जैसा मौसम वैसा गीत हम आप लोग के सुनाएंगे। हम चलेंगे कुछ पुराने पुराने गाने लेके जो हम आप लोग को सुनाने वाले हैं। आज प्रोग्राम को मैंने बना चुका है और मूवी दो बदन से मैंने कुछ गाने को सिलेक्टेड किया है जो मैं आप लोग को सुनाने वाला हूं, और ऐसे ऐसे हमारा प्रोग्राम रहेगा। आज का सवाल जवाब अभी रहेगा, अभी हम बताएंगे कौन सा वक्त हमारा सवाल और जवाब का प्रोग्राम रहेगा। तब तक के लिए हम चलेंगे मूवी दो बदन, लो आ गए उनकी याद, लता मंगेशकर की आवाज़ है और इसका म्यूजिक जो बजा करके सजा करके लाया है वो है रवि, जो हाथ चलाया गया है, जो लायरिक्स लिखा गया है वो है शकील बदायूनी, जो इसका लायरिक्स को लिखा है और काफ़ी अच्छे लायरिक्स को लिखा है, जो हाथ और स्याही चलाया गया है बहुत ही अच्छी है। चलो हम सब मिल के सुनेंगे इस गाने को, आप है तो हम है, हम है तो आप है, और भूल मत जाना हम सब चुने थे एफग्रीन लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से।

लो आ गई उनकी याद वो नहीं आई। और मूवी दो बदन का निकाला हुआ गाना है जो लता मंगेशकर की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। तो चलो दोस्तों, मैं आपको अगले गाने सुनाने वाला हूँ जो मूवी दो बदन से निकाला हुआ गया है। और जब चले ठंडी हवा, हम आपको वो गाना सुनाएंगे, मिलके सुनेंगे। और देखा जाए तो यहाँ तक है हमारा थोड़ा सा छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, हम इसे सॉल्व करते हैं अभी यूट्यूब के प्रॉब्लम में। तब तक के लिए हम चलाएंगे इस सॉन्ग, सुनते हैं, देखे हैं जाइए।

जी हाँ दोस्तों, जब चली ठंडी हवा, ये मूवी देखा जाए तो दो बदन का है और आशा भोसले की आवाज़, इसका म्यूज़िक फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, रफ़ी है जो सजा करके म्यूज़िक को हम तक तो पहुँचाए है और इसका जो ना इसका हाँ म्यूज़िक है रफ़ी और लाइरिक से शकील बदा यूनी। ठीक है दोस्तों, आपको आगे ले चलते हैं और सुनाने वाली है मूवी दो बदन से, एक बार रहे गर्दिश में हर दम। देखा जाए तो ये गीत कुछ को नहीं यहाँ पे है। ठीक है, हम चलाएंगे रहा गर्दिश में, हम आप लोग के सुनाते हैं मूवी। देखा जाए तो दो बदन का है, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है, म्यूजिक रफ़ी है और शकील बदा यूनी के लाइरिक्स है।

जी हम दोस्तों रहे गर्द शो में हरदम पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवास और मूवी दो बदन शिकिल बदायूं का जो लायरिक्स है और रफी का म्यूजिक है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से चलते हैं और कहते हैं हर घर में जहां दुख है। एक घटना हो चुका है सुरीनाम देश में जो फिरंदे तखियार ए नस्तखियार और सैफ नस्तखियार का तीन औरत जो जल के घर में गुजर गया है। और हमारा एक बहुत बहुत ही अच्छा जिसे हम जानते हैं उसका भाई के ऊपर पेड़ गिर गया है जहां सोना खोदा रहा था मशीन पे, उसका भी ध्यान हो चुका है। उन घरों में भगवान इतना ताकत दे, अल्लाह ताला इतना इसे इतना सब्र दे हर एक चीज सहने के लिए और सहन शक्ति दे कपता हर एक चीज़ से दूर पास हो जाए और अपना ज़िंदगी को फिर से बेसोच के चलना चाहिए। दोस्तों सहन शक्ति बहुत ज़रूरी है और हम सब यही मांग सकते हैं अल्लाह ताला से और भगवान से मांग सकते हैं सहन शक्ति दे भगवान, इतना ताकत दे कि अपना हर एक चीज़ सहे सकता है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे और देखो जो भी नसीब में लिखा है वही होगा, न उसे कम न उसे ज़्यादा होगा। हम एक गाने को रखा है यहाँ इस चून पे रख चुका हूँ, नसीब में जिसकी जो लिखा है और हम सब जानते हैं दोस्तों ये नसीब का खेल है और हम उसमें हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दुआ और प्रार्थना कर सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर से मांग कर सकते हैं कि शहद शक्ति दे। नसीब में जिसकी जो लिखा है उसका जो गाने वाला है वो पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी है और इस हर चीज फिल्म का जितने गाने हैं रफ़ी साहब ने इसका म्यूजिक को बजाया है और शकील बदायूनी हर एक गाने का लाइरिक्स लिखा

जी हाँ दोस्तों, नसीब में जिसकी जो लिखा था, और मूवी दो बदन का है, और रफ़ी का म्यूज़िक है, और ज़िकिल बादा यूनी के लायरिक्स है दोस्तों। ठीक है, हम आगे ले चलते ही एक और गाना है मूवी दो बदन का, और भरी दुनिया में ये भी एक पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी के गाया हुआ गाना है, गीत है जो काफ़ी अच्छी है। दर्द भरी गाने हम आप लोग के सुनाने वाले आज, क्योंकि इस दुनिया में काफ़ी दर्द है। हर एक दर्द में, हर कितने दर्द में है, कितनी सोच में है, और कुछ कर नहीं पाते हैं, रोते हैं, और सभी कुछ करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। नहीं कि इसलिए मैं दर्द वाले गाने को चला रहा हूं, लेकिन यह प्रोग्राम ही ऐसे मैंने बना चुका हूं कि आज कुछ गाने होंगे जो हम लोग के भी सुन के कुछ दर्द मिलेगा, कुछ एहसास होगा, कुछ सोच में चले जाएंगे कि क्यों ऐसे हो रहा है। क्योंकि हम सबको मांगना चाहिए ऊपर वाला से, हर एक को ऊपर वाला से मांगना चाहिए, और यही मांगते हर एक की सहन शक्ति दे सहने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी बात है हमारे सुनने वालों, आज जितने लोग रेडियो को सुनते हैं, कुछ बातें होगी जो मांग सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। एक रोज सभी को जाना है जहां वो सब चला गया है, लेकिन क्यों और किस लिए, सब चीज़ हम लोग मांग के, भगवान से प्रार्थना करके, ईश्वर से मांग करके, अल्लाह ताला से दुआ करके हम चलेंगे। हर एक की ज़िंदगी सफल कर, हर एक के दुख पीड़ा से दूर कर, बचा के रख, अपने आप को बचा के रखना, जो भी करना है संभल के करना है, बचा के करना है। चलना है कहीं पे, कार में हो, रास्ते पे हो, या बॉम्ब में अपना काम कर रहे हो, बचा के हर एक चीज़ को करना चाहिए।

और जो जो अभी मैंने गाना सुनाया है, नसीब में जिसकी जो लिखा है वो हो के रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग को सोच के और विचार के चलना चाहिए, देख के चलना चाहिए, और यही मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। हमारा पूरा टीम के तरफ से हम सभी के लिए सोचते हैं और दिल से दुआ करते, दिल से मांगते हैं कि कहीं पे प्रॉब्लम ना हो, कितने देश में क्या क्या हो गया है, और सूरीनाम में जो घटना घटा है उस पलवार को हम जरूर सहन शक्ति मांगे, ताकत मांगे कि वो सब चीज़ सह सके। चलो हम चलते हैं, घर देखा जाए भरी दुनिया में।

भरी दुनिया में। अभी आप सुन रहे थे दोस्तों पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज और मूवी दो बदन, और रफी का म्यूजिक और शकील बदायूनी का लायरिक्स। और इस मूवी में काम किया है आशा परेख और मनोज कुमार ने। यहाँ तक हम आपको सुनाया मूवी दो बदन के कुछ गाने। हम आप लोग के लिए चलते हैं देखो जाए प्यार का मौसम, जिसमें आशा परेख और शशि कपूर ने काम किया है दोस्तों। और ये गीत जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो है तुम बिन जाऊँ कहाँ। देखा जाए पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज़ है, म्यूजिक एरदे बिरमन है, और देखा जाए मजरूत सुल्तानपुरी का लाइरिक्स है दोस्तों।

जहाँ दोस्तों तुम बिन जाऊं कहाँ। अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज, एस देवी बर्मन का म्यूजिक, मजरूत सुल्तानपुरी का हाथ कलम और स्याही इसी ने चलाया है दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम आप लोग के लिए चलते हैं रुक जा रात तहर जा रे चंदा मूवी दिल एक मंदिर, और जिसमें काम किया है मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार ने। चलो हम मिलकर सुनते हैं क्या गाना है। हम कुछ पुराने पुराने गाने आप लोग को सुनाएंगे। आज का मौसम देखा जाए तो मौसम बढ़िया नहीं है, बच के निकलना, बच के करना पारापली जिसे छाता कहते हैं, लेके चलना किसके पानी अभी बरसेगा। जहाँ भी जाना है अपना चीज खरीद के, जो काम पे नहीं है काम नहीं करते, घर पे बैठ के रेडियो को सुनिए, अपने गरम गरम कॉफ़ी पीजिए या ठंडा कॉफ़ी भी है आप इस्तेमाल कीजिए, और घर पे रहना, खाना पकाना खाना या रेडियो को सुनना, रेडियो सुनना मत भूल जाना। देखा जाए हमारा आप में ऐप पे काफ़ी लोग हैं जो इस वक्त रेडियो को सुनते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, इसलिए हम चलाते हैं आज सिर्फ पुराने गाने। और रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

कहते ही रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की मेला। लता मंगेशकर की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे और देखा जाए मूवी है दिल एक मंदिर जिसमें मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार ने काम किया है। हम आप लोग के लिए चलते हैं, देखा जाए हम ले चलते कि एक ऐसा गाना, ये गाना मैं भी आज पहली बार सुन रहा हूँ कि कुछ दम है इस गाने में, कुछ पुराना गाने हैं और ये गाने का है नी सुल्ताना रे। हम देखते हैं नी सुल्ताना में क्या देखा जाए। तो इसमें लता मंगेशकर और पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ है, एरदेई बर्मन का म्यूजिक है और मजरूत सुल्तान पूरी की लाइरिक से जो काफ़ी अच्छे लाइरिक्स को लिखा है। ये गाना मैं भी आज पहली बार सुन रहा हूँ, सच कहता हूँ।

जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज अभी आप सुन रहे थे। और देखा जाए तो मूवी अभी हम बताते। मूवी मैंने बता दिया है कि मूवी है, चला देखा जाए, प्यार का मौसम जिसमें काम किया है आशा परेख, शशि कपूर ने। हम आप लोग को ले चलते एक बार फिर से दिल एक मंदिर, और वो भी है पद्मश्री मोहम्मद रफी का गाना, शंकर जय किशन का म्यूजिक है, शैलेंद्र का लायरिक्स है, याद ना जाए।

जी हाँ दोस्तों, याद न जाए बीते दिनों के, पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज से मूवी दिल एक मंदिर। चलो दोस्तों, आपको ले चलते हैं एक बार फिर से प्यार का मौसम, जहाँ पे तुमने सुना था तुम बिन जाऊँ कहाँ, जिसमें काम किया था आशा परीक शशि कपूर ने। हम आप लोग ले चलते हैं इस गाने पे, ना जा मेरा हमदम, कुछ अच्छी ही गाने हैं और लता मंगेशकर का आवाज़ है।

0: Glasgow-Pool op 00-597-8757-939. In Nederland 06-574-188-73. Amalia, auto verhuurbedrijf in Suriname.
1: Ja, dus we hebben zo reden nieuws en reclame. En we gaan weer देखा जाए हम आप लोग के लिए चलते हैं मूवी मूवी प्यार का देखा जाए जी हाँ प्यार का मौसम से कुछ गाने मैंने चुन करके निकाले हैं और नेकंती जस्तक का ये मूवी है और अभी हम आप लोग चलाएंगे देखा जाए पद्म नहीं लता मंगेशकर की आवाज़ हम आप लोग को सुनाएंगे और उसका म्यूजिक जो बजाया है एयर देव बर्मन है मजरूत सुल्तानपुरी का ये लाइरिक से दोस्तों चलो हम सुनते हैं कुछ गाने हम सुनाएंगे जो हम भी नहीं कभी सुना है और जैसा मौसम वैसा गाना

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज और मूवी दिल एक मंदिर। चलो हम आपको फिर से एक बार ले चलते हैं, देखा जाए तब। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं एक बार फिर से प्यार का मौसम मूवी का नाम है, और देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रख दिया है यहाँ चुन पे। जी हाँ, हम नहीं दिल एक मंदिर में ले चलते हैं, और गीत का बोल है हम तेरे प्यार में पागल हो चुके हैं, या ऐसे कुछ है। हम बनाते अपने हम तेरे प्यार में, और दिल एक मंदिर है, लता मंगेशकर की आवाज़ है, जैसे मैंने कहा था शंकर जय किशन का म्यूजिक है, हसरत जयपुरी का लाइरिक्स है।

जहाँ दोस्तों हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। मूवी दिल एक मंदिर और लता मंगेशकर की आवाज आप सुन रहे थे। अभी मूवी मत भूल जाना, नहीं कम दिन 26 तक का है दिल एक मंदिर। ठीक है, मैं आप लोग एक बार फिर से ले चलते हैं प्यार का मौजम, जिसमें आशा परेख और शशि कपूर ने काम किया है। चलो हम सुनाते हैं, क्या गाना है यार, अंदाज में है।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज और प्यार का मौसम मूवी नेगेटिव ट्रेन से तक का है, नेगेटिव नेगेटिव से तक का, जिसमें आशा परेख और शशि कपूर ने काम किया है। चल हम आप लोग के लिए चलते हैं दिल एक मंदिर, जहां पे मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार ने काम किया है और जुना जाए इस गाने को गाया है, देखा जाए पद्मश्री मोहम्मद रफी और जुमन कल्याण भूरी, लाइरिक्स है हसरत जयपुरी और म्यूजिक है शंकर जय किशन का।

जी दोस्तों, दिल एक मंदिर है, मूवी का नाम भी है दिल एक मंदिर, और इसमें काम किया है मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार ने। ठीक है दोस्तों, हम एक बार

चलो हम आपको सुनाते हैं, एक फराह सिंह भी हो चुका है, हम देखते हैं कौन सा गाना ये है। और ये भी मूवी मूवी तुम बिन के नहीं है, हम आप लोग के बताते हैं प्यार का मौसम है, मूवी प्यार का मौसम निखिलन शस्त्र का है, और जिसमें शशि कपूर और आशा परेख ने काम किया है।

ज्यादा सभी आप सुन रहे थे पद्म श्री मोहम्मद रफी की आवाज और प्यार का मौसम से निकाला हुआ गाना है। आशा परेक और शशक पीर ने काम किया है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम में सवाल और

जवाब भी है। काफी लोग सही जवाब को दिया था और जवाल था जो तोर है तो कमती खबरें करे दूसर कोई और ज्यादा खबरें करे जो तोर है तू ना खबरें करे उ तोर बाह मत हो के ना खबरें करे दूसर कोई ज्यादा यूज करे है कौन ची है। काफी अच्छे अच्छे हल आ चुका है काफी अच्छे जवाब आ चुका है लेकिन हमारा प्रोग्राम चलेगा 12 बजे से 1 बजे तक रहेगा आज सवाल और जवाब का प्रोग्राम। देखा जाए दोस्तों दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं इंडिया से एक मेरा भाई जैसा है और देखो ये तारा दी प्रोग्राम को सुनते हैं कहा लिखा भाई अनिल मोयन लीडर सोरेक एक खनित इरफान खुरुचस इंडिया से दूर दूर से प्रोग्राम को सुना जाता है जर्मन से प्रोग्राम को सुना जाता है स्पेन से प्रोग्राम को सुना जाता है सूरीनाम से प्रोग्राम को सुना जाता है हॉलैंड देश से हर एक शहर से प्रोग्राम को सुना जाता है। और मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते रहना शुभ दिन शुभ सुबह और शुभ एक बहुत ही लकर दिन तुलक के रहे और हर एक दुख से बचा के रहना हर एक चीज़ से बचा के रहना जो भी करना है घर पे खाना पका रहे बचा के पकाना चम्मच को बचा के चलाना कहीं गिर न जाए कहीं छलक न जाए ये बात ऐसी है और हर एक चीज़ बचा के करना। प्रोग्राम को दूर दूर से लोग सुनते हैं अभी देखा जाए तो 11th to 12th है सवाल और जवाब काफ़ी लोग है प्रोग्राम में जो सही जवाब को दिया है अभी हम उसके गाने को ज़रूर चलाएंगे तब तक के लिए हम चलते हैं। देखा जाए सुमन कल्याणपुरी की तरफ बहुत अच्छी गाना है हम सब मिलकर सुनेंगे।

जन सभी आप सुन रहे थे ओ मेरी लाडली नंदी सी मेरी लाडली, अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुरी से दोस्तों, जो अच्छी क्या अच्छा गाना गाया है ओ मेरी लाडली। चलो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी हम ये जो मूवी मंदिर दिलिक मंदिर का गाने ख़त्म हो चुका है, हम एक गाने और चलाएंगे प्यार का मौजम का, उसके बाद हम चलेंगे एक काफ़ी माँ है जो प्रोग्राम को सुनते हैं और माँ क्या बोले गो माँ के गाना हमें सुना दे। हर एक माँ जो प्रोग्राम को सुनते उसे हम सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और एक शुभ दिन कहते हैं। ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहिए, हर एक माँ तो माँ है, ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहिए माँ। और माँ जी हम आपके साथ हैं, अगर आप हमारे साथ हैं तो क्यों हम आपके साथ न रहेंगे। सदा आपके चरण में मैं हूँ और सदा ऐसे चरण में बैठा रहूँगा। ठीक है, हम दो तीन गाने और घुमाएंगे आज फरमाइश है के आज जो प्रोग्राम है मेरा 11 बजे से के न्यूज़ और बयाम के बाद एलफ तो ट्वेल्फ हमारा प्रोग्राम चलेगा सवाल और जवाब। दिल थाम के बैठिए, काफ़ी अच्छा सवाल है और हम बताते हैं कौन कौन सही जवाब को दिया है। और जो लोग गाने मांगते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे गाने मांगते हैं, मस्त मस्त मस्त रहेगा एक घंटे का प्रोग्राम, हम चलाएंगे उसे और आप मांग करेंगे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने। हम जानते हैं जो लोग सही जवाब को दिया है काफ़ी अच्छे अच्छे गाने को मांग करते हैं, हर रोज़ की तरह आज भी चलेंगे कुछ अच्छे अच्छे गाने। एक घंटे का प्रोग्राम है दोस्तों, वक्त नहीं है, लेकिन फ्राइडा के हम फ्री रहेंगे, शुक्रवार को प्रोग्राम को हम आगे जरूर चलाएंगे सवाल और जवाब। तब तक के लिए हम चलते हैं मूवी प्यार का मौजम, जिसमें आशा परेख और शशि कपूर ने काम किया है।

0: जी हाँ दोस्तों, मूवी प्यार का मौसम और गाने वाले थे, गायिका थे लता मंगेशकर। और हर इस फिल्म में जितने गाना है उसका म्यूजिक बजाने वाला है एरदे बिरमन। हर एक गाने पे म्यूजिक के साथ दिया है एरदे बिरमन और उसका लिरिक्स भी एक ही है, वो है मजरूत सुल्तान पूरी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा था आपसे प्रोग्राम को कैसे मैंने सजाया है, अब हम चलेंगे एक गाना। हर एक माँ, कितने माँ है जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और मैंने एक आप ऐप पाया है कि माँ के लिए कुछ गाने सुना दे। ठीक है दोस्तों, हम सोचते हैं दो गाना हम चलाएंगे, एक गाना माँ के चलाएंगे और एक गाना हम अपनी तरफ से चलाएंगे, हमारा पूरा टीम के तरफ से चलाएंगे, फहुन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से हम चलाएंगे। और उसके बाद हम चलेंगे न्यूज़ और रिक्लाम, तब आएगा प्रोग्राम चटकेगा, सवाल और जवाब में हम आप लोग के लिए चलते हैं और उस जमाने में ले चलते हैं जहाँ काफ़ी पुराने पुराने गाने लोग मांग करेंगे। आज का प्रोग्राम था, आज का जैसा मौसम है वैसे गाना को मैंने रख दिया है। कॉफी बना लिए, गरम गरम कॉफी बना के रख ले, ब्रेड कासी बना के रख ले, खाऊ न कासी निथर कमें नकाशे बना के रख ले, कॉफी बना के रख ले, अभी चटकेगा प्रोग्राम सवाल और जवाब। तब तक के लिए हम चलते हैं, ये गाना हमारा पूरा टीम के तरफ है, हर एक माँ दुनिया भर के माँ के लिए जो इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं। और यह गाना हम नए अंदाज वाला आप लोग के सुनाएंगे, हम भी सुनेंगे क्योंकि मुझे भी कई गो माँ है, दुनिया के हर एक माँ मेरा माँ भी है और हम हर एक माँ के लिए ये कहते हैं आशीर्वाद से।
1: आ गई,
2: चलो जल्दी

0: आई लव यू।
1: जी हाँ दोस्तों, आपने कहा था आई लव यू माँ, ये माँ का गाना था। ये गाना मैंने माँ के सुनाया है, हर माँ में तो वही ताकत है, वही दिल है, वही ताकत है, और हर माँ माँ होते ही अपने जगह पे, हर माँ माँ होते हैं सबके जगह पे भी, माँ माँ होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था दो गाना और चलेंगे, उसके बाद न्यूज चलेंगे, रेखलाम में चलेंगे, तब प्रोग्राम को हम चटकाएंगे। लेकिन दबे पाँव उसे कहते ही जैसा मौसम, मौसम देखा जाए तो बारिश हो रहा है। मैंने कहा था कॉफ़ी बना के रख ले और कास ब्रोच स्मेर करके रख ले, बना ले, क्योंकि बे 11 बजे से 12 तक हमारा सवाल जवाब का फरमाइश चलेंगे। देखते हैं कितने लोग सही जवाब को दिया है। सवाल मत भूल जाना, क्या सवाल थे, जो तोर है वो तोर बा, तू कमती खबरें करे है, तू ना खबरें करे ज़्यादा, दूसर कोई खबरें करे है, ओकर अंतोर्थ बहुत मोई अंतोर्थ और बहुत मोई सवाल भी है। और जे जे हल कहेगा, जे जे हल को सही हल को बताएगा, सही अंतोर देगा, हक बनते हैं एक गाने मांगने के लिए। और आज मौसम है, देखा जाए मौसम, घर वाल मौसम है, सब कोई बैठ के रेडियो को सुन रहा है प्यार से, काफ़ी लोग प्रोग्राम को सुनते हैं, धन्यवाद शुक्रिया हर एक को। और अभी जो माँ के गाना था वो भी एक सवाल था, उसका जवाब देने वाला है कोई, है कोई जो अब हम उसका जवाब लाते हैं, और वो और कोई नहीं है, हरिओम शरण की आवाज़ हम आप लोग के सुनाते हैं, जो कहते हैं किसी की याद आती है। चलो हम आपको सुनाते को जैसे वाला गाना के मोई से सुनिए, तो जन्म माँ के गाना सुन रहे हरिओम शरण पुराने जमाने में अपना उसे जवाब देते हैं गाने पे।

0: जी हाँ दोस्तों, किसी की याद आती है तो गुनगुना लेते हैं। यही है जो हम सब इससे जोड़े हैं, जुड़ा हुआ है, जुड़ चुका है। कोई बिछड़ जाते, कोई यहाँ से कौन सा देश में रहते हैं, बस सदा याद ही रहता है, याद ही आता है। और बहुत बहुत बढ़िया बात है कि हम सब याद करते हैं, याद करते रहेंगे और याद करेंगे। याद बस किसी की याद से हम सब जुड़े हैं। ये जो माँ के गाना था, अगर बढ़िया से सुने तो ये उसका जवाब थे। और एक बहुत अच्छा तरीके से, एक बहुत अच्छा, बहुत बहुत मोइस से और दोनों मैच हुआ है। किसी की याद आते अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज़ से। इसका म्यूजिक हरिओम शरण खुद ही कंपोज किया है और क्या अंदाज में इस गाने को गाया है। बहुत ही बढ़िया गाना है। अगर आप कभी गम में है, कभी सोच में है, भूल मत जाना, बस इस गाने को सुन लेना, किसी की याद आती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, अब हम चलेंगे न्यूज और रिक्लामों की ओर। उसके बाद हम आते हैं, हाहाकार नहीं मचाएंगे लेकिन दबे पांव से कहते हैं, धीरे से हम सब चलेंगे सवाल और जवाब की तरफ।
1: कातुन का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Juvenau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, live in concert Juvenau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Juvenau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Bridge op 06-300-1700-01 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahu.
6: Digitale radio, fahunfm.nl.
7: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima begonnen vandaag hun streekbezoek aan de Kop van Drenthe bij het gevangenismuseum in Veenhuizen, waar burgemeester Klaas Smit van Noordenveld hen verwelkomde. De 4-jarige Melle overhandigde Maxima bloemen. Het koningspaar bezoekt de gemeente Noordenveld, Tinarlo en Assem en sluit af bij de buitenplaats in Eelde. Dit is hun tweede streekbezoek dit jaar. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Het weer nog tot slot. Vanmiddag breidt de regen zich verder uit over het land. De zon blijft op meeste plaatsen onzichtbaar. Voor de regen uit tussen 20 tot 23 graden, maar in de regen 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer
0: 070-3562-4747. ये प्रोग्राम बहुत अच्छी प्रोग्राम है और सवाल जवाब का प्रोग्राम बहुत अच्छी प्रोग्राम है और ले रही है कुछ ना कुछ हम प्रेशर करेंगे उस जवाब को पाने के लिए सवाल पे। ये कुछ गलत प्रोग्राम नहीं है, हमारे देखें बहुत सही प्रोग्राम है और इमें प्रेशर करके के कौन ची है अंतूर। जैसे मैंने पूछा था कि ऊंची तौर है लेकिन तो कम उसे इस्तेमाल करते हैं, कम यूज़ करते हैं, दूसर कोई ज़्यादा ओके यूज़ करते हैं, खबरें करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और सही जवाब तो आ गया है, मैं अब उसका हल बता रहा हूँ, बढ़िया से सुनिए। जो नहीं जानते कहों पे लिख के रख सकते, आप भी कभी कहों पे पूछ सकते हैं, काफ़ी दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने पूछा था जो तोर है तो कम खबरें करते हैं, कमती उसे तो खबरें करे, दूसरा कोई और ज़्यादा है। तो पहला हुई अंतोर आया था, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। वो है मिस्टर अंद्रे जो हमारा साथ गाना को गा रहे हैं। हर इतवार को हम सब गाना गाते हैं, टेक चेंस करो कुपर मर्सी के साथ गाना को गा रहे हैं। रामदयाल सिंह है अंद्रे, रामदयाल सिंह जो सही जवाब को दिया है और सही जवाब ये है आपका खुद का नाम। अब भाई अंद्रे ने कहा अपना नाम, अब भाई अंद्रे अपन नाम दिन भर ना बोली, दूसर को यू के बोला बोला भाई अंद्रे, एक और बोले भाई अंद्रे फावका, भाई अंद्रे कैसे रह ले, मैं खुद भाई अंद्रे अपना नाम नहीं लेता है। हर कोई जो है अपना नाम नहीं लेते है, ज़्यादा दूसर कोई लेवे ना, तो अपना नाम को कम आप जो हम बोली जो तोर है तो कम खबरें करें, दूसरा कोई ज़्यादा, तो वो है अपना खुद की नाम। और भाई अंद्रे ने एक बहुत ही अच्छा गाना को मांग किया है, देखा जाए दुनिया क्या जाने, अब दुनिया का जाने मेरा अफसाना, देखा जाए तो ये नवजात का म्यूजिक है और क्या गाना है यार, अंदाज वाला गाना हरदम भाई मांगते हैं, ऐसे ऐसे गाना मांगते हैं कि लोग भी सुन के, जो लोग गाना मैंने कई बार भाई गाना को मांगा, जो गाना मैं कभी नहीं सुना था और अच्छे अच्छे गाना को मांग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था दबे पाँव जैसा मौसम वैसा गाना भाई भी मांगा है। हाहाकार तो नहीं मचेगा लेकिन फिर भी हाहाकार जैसा यह प्रोग्राम है, सवाल और जवाब पे भाई अंद्रे सही सही सही जवाब दिया है और सही गाने को मांग क्या है, दुनिया क्या जाने मेरा अफसाना, आपका नाम करता हूँ भाई अंद्रे।

जी हाँ दोस्तों, नेखंती नेखना फिर तक का ये मूवी है और ये गाना भी नेखंती नेखना फिर तक में बनाया गया है। भाई अंदरी बहुत विशाल गाना मंगल, क्या गाना है और क्या आवाज है। मैंने इस पे नहीं लिखा कि कौन गाया, सुराइया है या कौन है या शमशान बेगम है, इस दोनों से एक है जो इस गाने को गाया है। और या ओके, क्या गाना को मांगा भाई भाई अंदरे। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं, ऐसे हमेशा प्रोग्राम को सुनते हैं और आप बहुत पसंद करते हैं, सदा कहते हैं भाई अनिल बहुत बढ़िया यार प्रोग्राम बहुत बढ़िया बनते हैं फाहुन पे। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग फाहुन क्यों कहते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं फाहुन हूँ। अगर आप लोग के कॉम्प्लीमेंट देना है तो रेडियो फाहुन को दीजिए, हर एक रेडियो को कहते हैं बस रेडियो फाहुन को दीजिए, हम रेडियो फाहुन से जुड़े हैं और आप सब रेडियो फाहुन से जुड़े। बहुत खुशी की बात है कि आप सब हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम लोग नहीं हैं। जब तक आप लोग हैं हम लोग हैं और हम सब जुड़े हैं, हम सब जुड़े हैं रेडियो फाहुन से। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अगले गाने। तरुण भाई, तरुण जो इंडिया से प्रोग्राम को सुनते हैं और कहते हैं अनिल भाई, अनिल क्या प्रोग्राम है यार, कितने अच्छे सा प्रोग्राम को कहते हैं और वो भी लाइक करते हैं, हमेशा सुनते हैं फाहुन को और सही जवाब को दिया है, इंडिया में है, इंडिया से प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है अपने नाम, अपने नाम। ठीक है, अपना नाम हम खुद यूज नहीं करते हैं, दूसर लोग उस नाम को यूज़ करते हैं। आपको दिन भर लोग बुलाते हैं अनिल क्या है यार, अनिल क्या है, हम कई को ऐप पहले खाली अनिल अनिल अनिल, बकिन वो अपना नाम को नहीं बोला है। तो उस मेरा सवाल पे जवाब है अपना खुद की नाम। और मांग किया है मूवी मंजिल से नहीं खनते से ईफन तक में, जिसमें अमिताभ बच्चन और मौसमी ने काम किया है। रिमझिम गिरे सावन, लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों, हम सब चलाएंगे और सुनेंगे। भाई तरुण आप प्रोग्राम को सुनते ही आप एकदम इंडिया पहुंचाए लोचा, आठ समुंदर के सात समुंदर पार आपके घर पे हम इस गाने को सुनाते हैं। आठ समुंदर नहीं है यार, सात समुंदर पार तो भी हम आपके काम तक इस गाने को पहुंचाते हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं। बारंबार धन्यवाद हो, ऐसे ही सुनते रहना हमारा प्रोग्राम को, आप भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं रेडियो फाहुन से।

जी हाँ दोस्तों, मूवी मंजिल 1979 का लता मंगेशकर का आवाज, और इस फिल्म में काम किया अमिताभ बच्चन और मऊ जमीने और भाई तरुण, जो इंडिया से प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है और बहुत ही अच्छा गाना को मांग किया है। भाई तरुण, ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते रहना हमेशा, हम सब जोड़े है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से एवरग्रीन लव लव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके घर तक मैंने गाने को पहुंचा दिया। प्रोग्राम को सुनते रहना और हम बढ़ेंगे आगे, वक्त नहीं है क्योंकि काफ़ी लोग हैं। हमारा तुम्हारा मिलन 3 क्वार्टर और रहेगा और 3 क्वार्टर में हम देखते हैं हम कितने फरमाइशें सुना सकते हैं, और उसके बाद एक सवाल भी करेंगे जो शुक्रवार के चलेंगे। आप सब सही जवाब देते रहना, सही गाने को मांगते रहना। और देखो हमारा भाई अमृत, जो हमारा हम लोग बगले बगले सुना में वेख नर पेपर पोत के हम लोग बाटी, मेर सौरख के हम लोग बगले बगले रहली, हम लोग साथ साथ बड़ा हुआ हूँ। और भाई अमृत प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है, कहीं पे दिल लग गया है, कहीं पे दिल खुश हो गया है और कहीं पे दिल चला गया है। दो दिल मिल जाए तो क्या बात है, ये एक शायद है, दो दिल मिल जाते तो क्या बात है, कहीं पे दिल चला गया है, कहीं पे दिल लग गया है और दिल रुकेगा नहीं, दिल सदा चलेगा। यहाँ भाई अमृत का दिल भी कहीं लग गया है ना भाई, इस गाने से जुड़ गया है हमारा भाई अमृत, और सही जवाब को दिया है एक नाम और मांग क्या है, देखा जाए मूवी आनंद, फिल्म आनंद से निकला हुआ गाना है, कहीं दूर जब दिन थल जाए, और जिसमें रेस खन्ना सुमित देखा जाए, हाँ, और रेस खन्ना ने काम किया है, अमिताभ बच्चन ने है उसमें, और मांग किया है और कहीं दूर जब दिन झल जाए, और उसका लाइरिक से युगेश जो लाइरिक्स को बजाए लिखा है। हम सुनाते हैं भाई अमृत, आप घर पे है बैठा लो चाय पिए है, बोले खूब बिस्कुट खाएगा, ठीक है सही बात है, मौसम ही कुछ ऐसा है कि कॉफ़ी पी बिस्कुट खा ब्रेड खा, ठीक है, और प्रोग्राम को सुनते हैं ये गाना आपके नाम भाई अमृत।

जी हाँ दोस्तों, देखना शहर से अमृत मोहन जो प्रोग्राम को सुनते ही और सही जवाब को दिया है एक नाम और मांग किया था कहीं दूर जब दिन ढल जाए मूवी आनंद के, जिसमें अमिताभ बच्चन और एस खन्ना ने काम किया है दोस्तों, और इसका लायरिक जो लिखा गया वो है युगेश। जी हाँ, अमृत सही जवाब को दिया है और दिल तो लग गया है दोस्त, दिल लगना चाहिए इस गाने पर। क्या गाना है और ये गाना आपका दिल जीत लिया है, दिल लग गया ना गाने से। ठीक है भाई, अमृत मोहन है हमारा बगल में मेर सौरख वैद्यनाथ पेपर पोत के, हम दोनों हैं संग संग बड़ा हुआ है और सभी कुछ हम सब जानते हैं। सदा हम सब बढ़िया थे, हमारा बाप हमारा माँ बाप उसका माँ बाप हर एक बहुत अच्छा नाता थे और वो नाता हम नहीं आज तक नहीं भूले हैं। ठीक है भाई, आपको सलाम करते हैं, नमस्कार कहते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप प्रोग्राम को छूते हैं भाई अमृत। ठीक है, सही जवाब दिया, सही गाने को मांग किया है। चलो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था मखंता में एक है जो अनोनिम रहना चाहता है, हम नहीं बोलेंगे भाई हैगा या बहन है, लेकिन कोई है जो अनोनिम है और सही जवाब को दिया है और मांग किया है, दो लफ्जों की है यही कहानी। अमिताभ बच्चन, जीना तमन, इस फिल्म में काम किया है द ग्रेट कैमलर।

जी हाँ दोस्तों, दो लफ्जों की है यही कहानी। अनोनिम अनोनिम चला गया था माँ अखंता के तरफ। मूवी द ग्रेट गैम्बलर नई खनती नई खनन जईफन तक का है। और मांग क्या था हमारा मखंता का, इंदिरा गांधी बैग का? अनोनिम अनोनिम है उसका नाम, हो चुका अनोनिम। और सही जवाब को दिया था ए खनाम। ठीक है दोस्तों, सही जवाब अनोनिम और सही गाने को

अपने मांग किया था। हम चलेंगे एक और अनोनिम है जो अभी ऐप पे आया था और कहता था सही जवाब अपन नाम, अपन नाम, अपना नाम या एक नाम, ठीक है, सही जवाब दिया था और अनोनिम रहना चाहता है और मांग क्या है, मूवी सफर। सफर नहीं कहती, सैफन तक का फिल्म है और गाने का बोल है जीवन से भरी तेरी आंखें, किशोर कुमार की आवाज है, कल्याण जानन जी का ये जो म्यूजिक सजा करके सुनाया है और लाया है हम सब के तरफ, और इस जो लायरिक्स लिखा है हाथ कलम सिहाई चला गया है इंदिवर के लायरिक्स से दोस्तों, और रईस खन्ना, शर्मिला टैगोर, अशोक कुमार, अरुणा ईरानी इसमें काम किया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, मूवी है, आप इन मूवी को ज़रूर देखिए, जीवन से भरी तेरी आंखें।

जी हाँ दोस्तों, सफर देखा थी नई फन तक का है और जीवन से भरी तेरी आंखें, ये मांग किया था अनोनिम है, जहां शहर का है। आप अनोनिम भी अपना गाने को मांग सकते हैं। हम समझते हैं कि आप नहीं चाहता है कि काफ़ी लोग आपका नाम जाने आप कौन हो, यह भी सही बात है, गलत इसमें कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं अनोनिम है, जनाक शहर से सही जवाब को दिया है और किशोरदा की आवाज़ बहुत जी कहता था सुनने के लिए, और उसका फेवरेट नंबर है जीवन से भरी तेरी आंखें, और मैंने आपको सुना दिया। म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने बजाया है, इंदिवर का ये लाइरिक्स है दोस्तों। ठीक है, हम अभी आप एक ऐप पाया हूँ, हमारा जो कोलेखा हमारा बुबू है रहीम बख्श, जो आज उसका जन्मदिन है। हम 12 बजे से आधा घंटा रहेगा और जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज उसका जन्मदिन है। हमारा बहन है, हमारा कोलेखा है, फागुन का एक उम्रस्तर है, बहुत सालों से वो यहाँ पे है, रेडियो पे है। हम कुछ फरमाइशें चलाएंगे हमारा बूबू के लिए। हम अभी से कहते बूबू हफीज तेर में जे फयार दख, अल्लाह ताला तुझे हर एक दुख से बचाए, हर एक सुख आपके दे और हर एक बीमारी से आपको बचाए, यही मांग करता हूँ। नाम सही लतीम फाहून, हम सब यही मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से मांग करते हैं, अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं, सदा खुश रहे, सदा हमारा साथ रहे, बस हर एक दुख से आपको बचा के रखे। अभी हम आधे घंटे का प्रोग्राम चलाएंगे, कुछ गाने हम सुनाएंगे जन्मदिन के गाने, और कुछ और गाने हम आपके सुनाएंगे। बूबू हमारा कोलेखा है, हम दीदी कही थी सदा, आज भी मुझे दीदी कहेंगे, बुबू कहेंगे, और कुछ फरमाइशें हम चलाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम चलते हैं, सवाल जवाब हो रहा है, देखा जाए। ममता जी प्रोग्राम को सुनते हैं, जर्मनी से नॉइस से सुनते हैं और सही जवाब को दिया है, बोले अपन नाम हम ना ले लो, दूसर कोई ले, सही जवाब है और मांग किया है। देखा जाए तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, मुकेश की आवाज़ है और म्यूजिक है कयाम और लायरिक्स है सहीर लुफानी। चलो मिलकर देते हैं, सुनते हैं, और ममता आपका नाम एकदम जर्मन में हम पहुँचाते हैं। ठीक है,

जी हाँ दोस्तों, मैं पल दो पल का शायर हूँ। मूवी कभी कभी अमिताभ बच्चन, राखी इसमें काम किया है, और मुकेश ने की आवाज़ थे, कयाम का म्यूजिक थे, और ऐसे मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों ये था जर्मन नॉइस, जहाँ पे ममता जी प्रोग्राम को सुनते सही जवाब को दिया है और बहुत ही खूबसूरत गाने को मांग किया है, जैसा मौसम वैसा गाना। ठीक है दोस्तों, हक बनता है मैं भी सही जवाब को दिया है, मैं भी सही जवाब को दिया हूँ। मैंने भी कहा था मैं ऐ का नाम कोई ना जाने है, मैं ऐप पे हमू लिख के दिया अपने ऐप पे मैं ऐ का नाम, तो मुझे भी हक बनता है एक गाना चलाने के लिए। आप सब के लिए मैं इस गीत को चलाता हूँ, और जब जी जब दीप जले, मूवी चिचोर जैसन जैफन तक का है, युदास हेमलता जो इसका जो सिंगर है, और रविंदर जय म्यूजिक और रविंदर जय का हाथ कलम चला है जो इसको लिखा है। मेरी तरफ से मैं इन्हें भी सही जवाब को दिया है, हक बनता है मैं भी एक गाना चलाऊं यार, ठीक है ना, हक बनता है। तो ठीक है चलो, आपके नाम करते हैं सवाल और जवाब।

जी हाँ दोस्तों, ये दूदास और हेमलता की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे, ये हमारा तरफ से, मैंने भी सही जवाब को दिया है सवाल पे, ये एक नाम। और हम ये भी बताना चाहते हैं दोस्तों, ये एक आखिरी गाना चलेगा, उसके बाद न्यूज़ की तरफ चलेंगे और रिक्लाम की तरफ, उसके बाद हमारा कोलीखा है रेडियो फाहून का मफरो रहीम बख्श, जिसे हम बूबू कहते हैं, दीदी कहते हैं, आज उसका जन्मदिन है। आधे घंटा हम प्रोग्राम चलाएंगे, उसका आधे घंटा का प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद फिर मिलेंगे शुक्रवार को। अभी हम यूं आया एक गाना चला करके, और ये गाना जहाँ शहर में जाता है, ये माँ है और एक माँ है, ये मेरा माँ जैसा है, माँ से बड़ा है, ये भी अनोनिम है लेकिन माँ कह सकता हूँ, ये भी सही जवाब को दिया है। और माँ क्या है, भर दे झोली मेरी, बहुत ही अच्छा गाना है, और हम ये गाना आपको सुनाते हैं, माँ आपके नाम करते, सही जवाब को दिया है और बहुत ही बढ़िया गाना को माँ किया है।

पहले भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़ कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

इस कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन।

0: जी हाँ दोस्तों, देहरांग शहर से माँ प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है और मांग क्या था, भर दे जोली मेरी हम कभी न जाएंगे खाली, माँ के गोद से कभी खाली नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये था सवाल और जवाब का प्रोग्राम। काफ़ी लोग है ऐप पे, अभी तक लोग मुझे ऐप कर रहा है, देखा जाए। ठीक है, फ्राइडे के हम इस प्रोग्राम को आगे चलाएंगे, शुक्रवार को आगे चलाएंगे, लेकिन शुक्रवार से पहले एक नया सवाल है। ठीक से सुनिए, कान ठीक से सुनिए, बढ़िया से सुनिए। ये सवाल जो है बहुत ही बढ़िया सवाल है। ऊपर जाते हैं नीचे आती है मगर हिलते नहीं अपनी जगह से। बोले ऊपर जाए जाहे नीचे आवे है मगर अपन जगह से ना हिले है, मगर हिलता नहीं है अपने जगह से। इसका ये सवाल है, इसका हल आप मुझे दे दे। सवाल जवाब है, जवाब देना पड़ेगा। दिस इज फ्राख इन अंतुर्त, अंतुर्त की हमें देना है। ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं मगर हिलते नहीं हैं अपने जगह से। ये है नया सवाल। ऐप खुल चुका है मेरा, तार का नंबर है 9 0 4 3 0 8 3 2 0 0 4 3 8 0 8 3 2। अभी से मुझे ऐप कर सकते हैं, जवाब सवाल दे सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। मुझको देना ऐप द्वारा शुक्रवार के लिए, क्योंकि एक और आधा घंटा का प्रोग्राम हम बनाते हैं सवाल और जवाब के शुक्रवार को। मंगलवार को एक घंटा का प्रोग्राम रहे, जे पहले देगा उसका हम गाने यूज करेंगे। ऐसे बात नहीं, जो बात में देगा नहीं चलेगा, वो भी चलेगा, तब मंगलवार पर जाएगा, शुक्रवार पर जाएगा, ऐसे प्रोग्राम हम चलाते हैं। जैसे मैंने कहा है, मैं 12 बजे तक आपके साथ देती, लेकिन आधे घंटा मैं ज़्यादा रहूँगा, क्योंकि हमारा मफरा रहीम बख्श जो फाहून का अमर उपस्तर है, काफ़ी सालों से यहाँ पे है और आज उसका जन्मदिन है। हम जन्मदिन मनाएंगे गाने द्वारा, आप लोग गाने सुनेंगे, जन्मदिन के गाने हम दो चलाएंगे और दो कुछ गाने सुनाएंगे मफरा रहीम बख्श के लिए, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है 8 सितंबर का। अभी से उसे हम कफिस्तर कहते हैं। दीदी भगवान अल्लाह करे हर एक चीज़ आपके कदम में रहे, हर एक दुख से बचा के रखे, सदा हमारे साथ रहे। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं न्यूज़ और बयान की तरफ, जहां मैंने कहा था कि ये चलेगा, उसके बाद हम आपको ज़रूर ले चलेंगे जहां से हम लोग को जाना है। वो रहेगा आधे घंटा का हमारा फरमाइश चलाएंगे, तब तक के लिए हम आपके लिए चलते न्यूज और रिक्लाम की तरफ। यूं गया यूं आया,
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: दिस इज इट फाहों हिंदुस्तानी रेडियो न्यूज। गुडमॉर्गन, ik ben Frank van der Klucht. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima begonnen vandaag hun streekbezoek aan de Kop van Drenthe bij het gevangenismuseum in Veenhuizen, waar burgemeester Klaas Smit van Noorderveld hen verwelkomde. De 4-jarige Melle overhandigde Maxima bloemen. Het koningspaar bezoekt de gemeente Noorderveld, Tinarlo en Assem en sluit af bij de buitenplaats in Eelde. Dit is hun tweede streekbezoek dit jaar. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Het weer nog tot slot. Vanmiddag breidt de regen zich verder uit over het land. De zon blijft op meeste plaatsen onzichtbaar. Voor de regen uit tussen 20 tot 23 graden, maar in de regen 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Hare kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 973-652-2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Ja, dus dit was nieuws en reclame. Zoals ik al zei, het zal ons tot 12 uur blijven, maar we zullen een half uur blijven, omdat onze फाहुन का एक अमरूपस्तर है मुफराव रहीम बख्श, जिसका आज जन्मदिन है और काफ़ी सालों से ये यहाँ पे है रेडियो करता है। हम सब दिल से हम सब आपको आपके दुआ देते हैं दीदी बुबू, पूरा टीम के तरफ से हम सब आपको खफीज तैयार करें, जन्मदिन मुबारक हो। और साल कितने खुबे ये हम नहीं पूछेंगे, और हम सब दिल से दुआ करते हैं, ये भी मांगते हैं हमारा पूरा टीम, हमारा डायरेक्टर जो है कुमार गिराव, हर एक के तरफ से भगवान से ही मांग करते हैं, ईश्वर से यही दुआ यही प्रार्थना है और अल्लाह ताला से ही दुआ है कि आप सदा हंसते रहे, खुशी रहे, अपना जन्मदिन को मनाते रहे। हम सब आपके भाई लोग हैं, छोटे हैं, आप बहु उम्र में बड़ा है, हम सब दीदी कहते आज आपका जन्मदिन है, एक बार फिर से जन्मदिन मुबारक। अगर हम आगे जनते तो आज पानी बरसें से लव बहुत शांता में खाना पकते आपके लिए, और खुशी का दिन है, हम खुशी वाली गाना गीत सुनाएंगे, क्योंकि आज जन्मदिन है, खुशी का दिन है, खुशी का मौका है, हम सब मिलके आपको जन्मदिन रेडियो द्वारा मनाते हैं। हम बहुत खुश हैं कि आपका जन्मदिन है आज, दिल से कहते दीदी, और हम खुश हैं, हम चलाएंगे आधा घंटा का प्रोग्राम आपके लिए, आपके जन्मदिन के लिए। और एक बार फिर से जन्मदिन मुबारक, हम ले चलते हैं मोतीमाला अंगद भोला सिंह के तरफ फरियाद आखिर जन्मदिन के नंबर हम आपके सुनाते हैं, हम सब मिल के सुनते हैं, काफ़ी लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। आज हमारा अमृतसर मफराव रहीम बख्श का जन्मदिन है, ऐप पे आ गया हमारा लश्तराज जो है आज का, वो सब दे दी आपको, कहते हैं खफे लिसी तीर्थ

mevrouw Rahim Baks. Dil se nikla hua dua hai sada sada khush rehna aur sada tandurust rehna, यही मांग है अल्लाह से और हमारा पूरा टीम है आपके साथ। हम और आगे जानते थे यहाँ लव बोट में खाना पकवाई थी और आज तो बारिश का मौसम है, नहीं तो बड़का बड़का झिंगा पक्कत, फिन बड़का बड़का स्नूक बारिश पक्कत, यमर के हम ना जहाँ थे आगे से ना ठीक है। जब से जलनी तब से मोई है, हम फिल्म चलते हैं, दुआ है यही हमारा पूरा टीम की तरफ से, हिंदुस्तानी फहर दीव की तरफ से आपको दुआ है, दिल से निकला हुआ दुआ है मफराओ रहीम बख्श के, आप सदा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, हम लोग के साथ रहे। और मत भूलना हमारा तेके चेंज करो ओको फरमासी, हमारा साथ भी है आपका, आपका नईफ है, हमारा भाई है महमूद रहीम बख्श भी आपको फलिस्तेर करते हैं और उसके तरफ से ये गाना हम चलाते हैं, आपके नाम करते हैं।

जी हाँ दोस्त, अभी आप सो रहे थे बार बार दिन ये आए नमसेल तिम फाहोन नमसेल करो को फरमासी मेरा हमारा ओम रुफ्तर के लिए मफराव रहीम बख्श का जन्मदिन है, दिल से निकला हुआ दुआ है और सदा रहेगा भी, खुश रहे और सदा तंदुरुस्त बना रखे अल्लाह ताला आपको। चलो हम चलते हैं, आधे घंटे का प्रोग्राम है, वक्त नहीं लेंगे, दविंदर सिंह शिवनाथ की तरफ हम चलते हैं।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मुबारक हो आपका, आज आपका जन्मदिन है, बहुत खुशी का दिन है, हम मिलकर खुशी मनाते हैं इस वक्त यहाँ स्टूडियो से, हम सब खुशी आपके मनाते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से ये मांग करते हैं, सदा हंसते रहे, हर एक दुख से आपको दूर करे, हर एक बीमारी से अल्लाह ताला आपको बचाए कर रखे, और हम चलेंगे आगे, ले चलते हैं सब भरोसों के साथ, खुशी मनाएंगे ना तो हम खुशियाँ मनाते हैं, ठीक से खुशियाँ मनाएंगे, ऐसे से गाना चलाएंगे जहाँ घर पर भी चुनमुन कर सकते हैं, डांस का दूसरा नाम है चुनमुन। आज हमारा बहन का जन्मदिन है, मफरम रहीम पक्स का जन्मदिन है, 8 तारीख सितंबर को उसका जन्मदिन है, और मनाएंगे धूप से मनाएंगे हम सब यहाँ स्टूडियो में, हम बला चुकली में खाना पकेगा, जे मांगे हाफिया को मई तो आ जाइए स्टूडियो में, खाना चुर रहा है इस वक्त, ब्रेन बोन मेथकेप

जी हाँ दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ गलत हो सकता है ज़िंदगी में, हर एक गलत बन सकता है, हो सकता है, पढ़ने भी आज भी कुछ गलत हो गया है मुझसे। जो मुफ़र्रर रहीम बख्श है बुबू, उसका आज जन्मदिन नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ने में कुछ आया कि आधे घंटा और रही जा दौर खान, फंदा फयारदा हम पढ़ लिया है, हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, और ठीक है मैंने तो भी अपने तरफ से आज जन्मदिन मना दिया है, ठीक है मैं माफ़ी चाहता हूँ, हर एक से मैं माफ़ी चाहता हूँ, भूल हर एक से होता है, आज मुझसे भी एक भूल हो चुका है, गलती हो जाता है, बहुत बहुत माफ़ कर देना दीदी, और ठीक है आप बहुत तो नहीं, आपको बुरा नहीं लगा है, लेकिन ठीक है माफ़ कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक प्रोग्राम था, और हम ये बताना चाहते हैं हमारा जो एक बेस्ट रही से बेस्ट है जो 3 नवंबर का है, जो स्कैलप से जाएगा 8 बजे फरसामल हो जाते हैं और 9 बजे फरतरेक है, यहाँ से एकदम से उबरहाउसन एम दाख दाखतू रहेगा, जाना है आना है, अगर आपको जाना है तो हमारा तार को नंबर पे मुझे कॉल कीजिए 9 6 4 3 8

ये सुंदर दर्द भरी गीत भी आज के प्रोग्राम में शामिल किया गया है। जरूर से आपको यहाँ से चुने हुए गीत पसंद आते होंगे।

ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ रफी जी। कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। हाँ दोस्त, कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं लड़ना कि कोई के हादसा पहुंचाना, नहीं, बल्कि जिंदगी अपना कुछ बनने के लिए लड़ना पड़ता है। और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ में चलोगे तो साहस तो देती है, पर पहचान जो आपका है ना, वो छीन लेता है।

तो हिम्मत मत हारो और ना ही घबराओ, ना ही रुको, क्योंकि पहाड़ से एक उपमा है, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियां ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा समंदर कितना दूर है। यहां से आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए ये गीत।

0: सेप्सा मैसा सेप्सा
1: सेप्सा
0: ओके हर देखना कर वो दासी यस
2: खुद से चले चले चले चले
1: क्या हो गया भाई।

0: कसे को मेडली आपके लिए पेश किया जाता है।
1: माती है तो माती

0: आज ये सिके सिके तो हम थोड़ा से यहाँ से रोकेंगे और आपको लेकर चलेंगे थोड़ा से सुनने के लिए सोहर वाला गीत।
1: अरे चाहती के

मंदिर हो म्यूजिक बाय दोस्ती म्यूजिशियन और सोहर के गीत जो हमके सुनाए के चैती की तिथि रविंद्र भोला सिंह।

0: De BYD Dolphin.
1: को यहाँ से लेकर चलते हैं और सुनने के लिए, और क्या मैं सेलेक्ट करके रखी हूँ इस वक्त मुझे भी नहीं पता, चले मिलकर सुनते हैं।

शाबाश शाबाश शाबाश वीरेश जी की आवाज पे हमने यहाँ सुने बैठक गाना तो इधर से फिर तक के ये गीत निकाला गया है सलगता बीत के धुन पर ससुर गली जाना है।

तुमसे मिलकर ना जाने क्यों आपकी आपकी बहुत याद आती है। आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, सुनने वालों

नाम कसूर से ये सुंदर सुंदर गीत आपके लिए पेश किया जाता है। छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबका हो जाओगे। और कहते हैं जैसे मोहब्बत तुम अपने माँ बाप से करोगे, जैसी मोहब्बत आप अपने माँ बाप से करोगे, वैसे ही मोहब्बत तुम्हारी औलाद तुमसे ही करेंगे। यही लेन देन है, यही लेन है, यही देन है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, बस समझ समझ के।

फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता, मिलता है लोग हजार, मिलते हैं लोग हजार, पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलता।

मोहब्बत हो ना जाए, ये तो हमारे और के आपके बस के बात नहीं है। मोहब्बत जो होना है तो हो ही जाएगा। आप जहाँ भी हो, जैसे हो, आपको एक शुभकामनाएं हम यहाँ से प्रकट कर रही हूँ।

बार शानू जी की आवाज़ में कि एक साथी चाहिए, कितनी उदास है जिंदगी, बस एक साथी चाहिए। जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। मेरे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों, भाई बहनों, जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालात जैसे हो, हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए।

परछाई से पूछ ही लिया, आज परछाई से पूछ ही लिया, परछाई यानी कि खादिव, आज परछाई से पूछ ही लिया क्यों चलते हो मेरे साथ। उसने भी हंस के कहा, और कौन है तेरे साथ।

शानू जी से सुने फिल्म का नाम कसूर। बहुत कुछ लिख लिख कर मिटा दिया है मैंने, बहुत कुछ लिख लिख कर मिटा दिया है मैंने, ठीक ना होने पर भी अपना हाल ठीक बताया है मैंने, बात बात पर अपने दिल को बहलाया है मैंने, अपनी सोच में ही होकर न जाने कितने रोया हूँ, अपनी सोच में ही होकर न जाने कितने रातों को जाग जाग कर बिताया है मैंने, कोई समझेगा नहीं ये हाल मेरा, कोई समझेगा ना ये हाल मेरा, बस इसी फिक्र में सबसे सब कुछ छुपाया।

राजकुमार, राजकुमार एक मशहूर एक्टर था दोस्तों, और राजकुमार का लव स्टोरी मीना कुमारी के साथ कैसे रहा, क्यों रहा, काहे के रहा। दोस्तों राजकुमार का पैदाइश हुआ 8 अक्टूबर 1927 को, मीना कुमारी का पैदाइश हुआ 9 अक्टूबर 1933 में। किंग ऑफ डायलॉग फिल्मों में राजकुमार का कवि, जी हाँ दोस्तों राजकुमार का काफ़ी नाम रहा है। डायलॉग से बहुत दिल चुराया है, आपको याद है, आपको याद है ये डायलॉग, आपके पाँव बड़ी हसीन है, आपके पाँव बड़ी हसीन है, इसे ज़मीन पर मत उतारना, इसे ज़मीन पर मत उतारना नहीं तो माली हो जाएगा। ये बात, ये डायलॉग है फिल्म पकीसा का, और राजकुमार मीना कुमारी से कहा था ये डायलॉग के बाद राजकुमार मीना कुमारी के देखते रहा दोस्तों, और वहाँ पर जो फिल्म मेकर्स था वो सभी सोचता था क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना प्यार राजकुमार को हो गया था मीना कुमारी के साथ। राजकुमार दिल एक मंदिर में भी काम किया मीना कुमारी साथ, और उसमें होप रॉल था राजेंद्र कुमार का, उसी फिल्म का सॉन्ग दिल एक मंदिर है।

King of Dialogue, राजकुमार. राजकुमार को मीना कुमारी से इतना प्यार हो गया था कि वो मीना कुमारी के साथ फिल्मों में काम करते वक्त अपना डायलॉग भूल जाते थे, सिर्फ उनका चेहरा ताकते रहते थे. जी हाँ दोस्तों, इस तरह से राजकुमार को प्यार मीना कुमारी से हो गया था. जब फिल्म पकीसा का तैयार हुआ, तैयारी का नाम लिया गया, और तैयार करते समय मीना कुमारी का पति कमल अमरोही ये फिल्म को बनाया, तो वो धर्मेंद्रा को साइन किया था इस फिल्म में काम करने को. लेकिन धर्मेंद्रा और मीना कुमारी का प्यार का चर्चा, जी हाँ दोस्तों, उसका प्यार का चर्चा बाहर फैल गया था चारों ओर. तो फिल्म मेकर कमल अमरोही ने सोचा कि मैं धर्मेंद्रा को नहीं लूँगा, राजकुमार को ले लिया धर्मेंद्रा की जगह पर. फिर भी क्या हुआ दोस्तों, अब जानते, जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकते, चाहे पहाड़ बीचे में आ जाते हैं उन्हें नहीं रोक सकते हैं. कहते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या. फिल्म पकीसा का एक सॉन्ग.

मॉडलम पकीसा का फिल्म मेकर कमल अमरोही जो मीना कुमारी का पति थे वो धर्मेंद्रा को निकाल कर और राजकुमार को काम पे ले लिया। फिर भी राजकुमार दीवाना हो गया मीना कुमारी से या मीना कुमारी के ऊपर, तो कमल को बहुत से जलन हो गया। उसके बाद फिल्म पकीसा के बाद कमल ने राजकुमार को फिल्मों में काम नहीं दिया। राजकुमार दोस्तों, राजकुमार मीना कुमारी के साथ कई फिल्मों में काम किया, आपको याद है दिल अपना प्रीत पराया, इस फिल्म में उसी तरह के स्टोरी था जैसे कि फिल्म पकीसा का। फिल्म काजल, राज ने मीना कुमारी के साथ इस फिल्म में काम किया, और किस क्यों काम किया कि इसलिए कि उसके साथ फिल्मों में आप जानते शूटिंग के समय पर प्यार मोहब्बत करने के लिए। फिर भी राजकुमार और मीना कुमारी का फिल्म दिल एक मंदिर का एक गीत है, मैं हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।

राजकुमार, वैसे राजकुमार एक रोमांटिक हीरो नहीं थे, फिर भी उन्हें मीना कुमारी से बहुत प्यार हो गया था। मीना कुमारी शादीशुदा और राजकुमार भी शादीशुदा। राजकुमार को चार लड़के थे, दो बेटा और दो बेटी, फिर भी ये दोनों में आपस में प्यार मोहब्बत थे। रुक जा रात ठहर जा चंदा।

राजकुमार और मीना कुमारी के लव स्टोरी। वैसे राजकुमार से बहुत लोगों से प्रेम नहीं थे, इसलिए कि राजकुमार हमेशा बड़ा बात कहते थे। पुलिस इंस्पेक्टर से फिल्म एक्टर बन गया और किंग ऑफ डायलॉग, जो जिस तरह से राजकुमार ने डायलॉग कहते थे, आज तक फिल्मों में बॉलीवुड के संसार में आज तक किसी ने उस तरह से डायलॉग नहीं कहता है। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म।

दोस्तों मीना कुमारी का मृत्यु इनदे तक मार्च 1963 में हुआ। और जब राजकुमार को पता लगा, जब उन्हें खबर मिला कि उन्हें ब्लड कैंसर है, तो राज साहब ने राजकुमार ने कहा, राजकुमार हूँ मैं, मेरा नाम बड़ा है, इसलिए मुझे छोटी सी बीमारी नहीं हो सकते है, मैं जब मरूंगा तो छोटी सी बीमारी से नहीं मरूंगा। दुख की बात यह है कि 12 अप्रैल 2006 में राजकुमार का मृत्यु हो गया।

आप ही का हैप्पी स्टेशन फार हॉर्न हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे सितारों का सफर जो अभी समाप्त हुआ। सिंटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आए हो, किशोरदा के आवाज में आप ये गीत को सुनेंगे। उन दिनों में जब ये फिल्म थिएटर दपाल में पेश हुआ तो मैं सोचता हूँ लगभग 16 या 17 साल के मैं था और ये फिल्म को मैं 2 या 3 बार देखा दोस्तों, स्पेशल इस गीत के लिए, सॉन्ग के लिए। बहुत अच्छा गीत है किशोरदा का, सिंटी सी शर्माई सी किसी दुनिया से तुम आई हो।

0: अक्षर।
1: कल होना हो, कल होना हो आज तो है, आज होना हो ये पल तो है, ये पल होना हो हम तो है, हम होना हो हमारा दोस्ती तो है। सुरेंद्र और आशा परेख का एक फिल्म चिराग, नीहरी नीह शस्त्र में जो फिल्म रिलीज हुआ, इसी फिल्म का एक सॉन्ग है पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ में, तेरे आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।

मुकदमा श्री मोहम्मद रफी के आवाज में, तेरे आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। एक गीत और है दोस्तों, तुम इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, आप तो ऐसे न थे, फिल्म का नाम है।

Listen up, yo. It's Valentine's Day.

जी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। पावन इंसान रेडियो पर आप चुन हैं, आप सुनेंगे दिल के बाद पियानो के साथ। के बाद पियानो के साथ चलेगा सिमी, फिल्म साथी का बात है। सिमी पियानो के पीछे बैठ गया है दोस्तों, और बगल में खड़ा हुआ है राजेंद्र कुमार और सामने विजयंती माला। और सिमी क्या फरमाएंगे अपन दिल का बात, आप खुद सिमी का दिल के बात सुनते रहना।

की बार आपन दिल के बाद पियानो के पीछे बैठ के सुनाएगा राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कहेगा, ऐ हुस्न जरा जाग, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए।

सो रही है, साधना जी सो रही है, जब ये म्यूजिक सुना, ये पियानो का आवाज़ उसे गले में, उसका कान में गया और राजेंद्र कुमार का आवाज़, तो वो जाग गया और आहिस्ता आहिस्ता आकर राजेंद्र कुमार के सामने खड़ा हो गया।

राजेंद्र कुमार के आवाज का और राजेंद्र कुमार का दिल के बाहर अभी आपने पियानो के साथ सुना। दिल के बाहर पियानो से सुनाएंगे आपकी बार मनोज कुमार। मनोज कुमार पियानो बजा रहा है और सामने खड़ा हुआ है वहीदा रहमान और मुमताज। मुमताज का चेहरे पे तो खुशी है लेकिन वहीदा रहमान का चेहरा तनी मायूस मालूम होता है। पता नहीं क्या हुआ, आप हो सकता है अगर आप ये गीत सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा हुआ या क्या हुआ है उस वक्त वहाँ पर दिल के बाद पियानो के साथ।

के बाद पियानो के साथ आप सुन रहे हैं और आपको मालूम है दोस्तों फिल्म संगम। इस फिल्म में एक फूलता दो काते यानी कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर और फूल था प्यारी सी फूल था वैजयंती माला। तो दोस्तों में जब प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत का बात रहता है। राज कपूर साहेब, राज कपूर जी पियानो के पीछे बैठा हुआ है और राज कपूर के पीछे बैठा हुआ बैठी हुए है वैजयंती माला, उसके सामने राजेंद्र कुमार राज कपूर जी क्या फरमाते हैं। मुकेश की आवाज़ है दोस्तों, लेकिन ये फिल्म में राज कपूर ने प्लेबैक किया। राज कपूर के ये सॉन्ग है दोस्त दोस्त ना रहा, अपन प्यारी जिगरी दोस्त के लिए फरमाते हैं, सुनिए।

उस दोस्त नारहा के बाद आप जानते हैं दोस्तों, दिल में दर्द छा जाता है भी, न सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लेकिन जब एक पिता बचपन में माता को और छोड़ के चला जाता है, तो आप जानते हैं किस तरह से एक माँ अपन बालक को पोसते रहते हैं। लेकिन बात यह हुआ है कि देव मुखर्जी पिता प्रदीप कुमार को पहचान लिया है, और प्रदीप कुमार अभी देव मुखर्जी को नहीं पहचाना कि वो उसका बेटा है। तो देव मुखर्जी पियानो के पीछे बैठे हुए हैं और सामने पिताजी खड़ा है, मुंह में एक सिगार लगाकर सुन रहे हैं ये गीत।

शेर के बाद पियानो के साथ में अब की बार दोस्तों निखिल आत्मशस्त्र की बात है। जब फिल्म ब्रह्मचारी पेश हुआ, शमी कपूर का प्यार था रायश्री से, लेकिन रायश्री ने शमी से प्यार किया और सगाई की प्राण के साथ। तो पियानो के पीछे बैठा हुआ है शमी और सामने बैठी हुई है प्राण और रायश्री, और शमी कपूर क्या फरमाते हैं सुनिए।

के बाद पियानो के साथ आप सुने, एक आखिरी दिल के बाद पियानो के साथ आप सुनेंगे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पियानो के पीछे बैठा हुआ है दोस्तों, और सामने बैठी हुए उदासी छाई हुए है चेहरे पर, बैठी हुई है वहीदा रहमान। और कुछ देर बाद आ जाते हैं, दिलीप के बगल में खड़ा हो जाता है मनोज कुमार। तो ये दोनों क्या फरमाते हैं मिलके, आप सुनिए दिल के बाद पियानो के साथ।

के बाद पियानो के साथ अभी आप सुन रहे थे दोस्तों फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है। हमेशा आप फाहन हिंदुस्तानी सुनते रहना और हर एक काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दफ्तर से न्यूज सीफ तक फिर सीफ पर आपको तार करना है। ओ माजिरे आशा जी के आवाज में आप गीत सुनेंगे। फिल्म बंडे हार्ट का सॉन्ग है दोस्तों ये फिल्म जिसमें मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। ओ माजी रे

बंदे हाथ का सॉन्ग मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इस फिल्म में मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। बात क्या हुआ है कि निखिल सीफन तक में जब ये फिल्म बन रहा था, फिल्म के शूटिंग के समय, तो मुमताज अपन मर्सिडीज बेंज से आते थे और अमिताभ बच्चन वही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में, एक छोटा सा मोटर कार से आते थे। तो हमेशा जब मुमताज आ जाते थे तो अमिताभ बच्चन वहाँ दरवाजा के सामने खड़ा होकर इसका कार को तारीफ करते थे। शूटिंग के समय भी कार के बात मर्सिडीज बेंज के बातचीत करते थे। तो मुमताज ने सोचा ये आदमी को मेरा मर्सिडीज बेंज बहुत पसंद है। तो मुमताज क्या कहा दोस्तों, एक रोज ये शूटिंग के बाद मुमताज निकल के चला गया और अमिताभ बच्चन के मोटर कार लेके चला गया और अपन मर्सिडीज बेंज वहाँ छोड़ दिया। आमने सामने एक दो लोग जो था उनसे कहा कि कह देना अमिताभ साहब से कि तोहफा के रूप में ये बेंज वो रख सकता है। तो अमिताभ बच्चन जब शूटिंग के बाद बाहर आया और देखा उसका मोटर कार नहीं है, वहाँ बेंज खड़ा हुआ है, तो लोग गया उससे कहा कि आपका कार जो है तो मुमताज उन्हें लेकर चला गया है। तो अमिताभ बच्चन के से बताया भी कि तोहफा के रूप में आप इन्हें रख सकता है। अमिताभ बच्चन बहुत खुशी हुआ और बहुत तारीफ किया मुमताज जी को। और आप जानते हैं दोस्तों, मुमताज अमिताभ बच्चन ये दोनों लगभग 5 या 6 फिल्म बनाया। मुमताज उन दिनों में एक पुराना एक्ट्रेस था, कई फिल्म खेल चुका था, लेकिन अमिताभ बच्चन वही जैसे मैंने कहा कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। और अमिताभ बच्चन के उतना पैसा भी नहीं था उन दिनों में एक नया कार किने, तो एक पुराना सा कार लेकर स्टूडियो में आते थे। तो ये था अमिताभ बच्चन और मुमताज का कहानी फिल्म बंदे हाथ का।

हो माँ जी रे, आशा जी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, देवानंद का फिल्म गाइड का सॉन्ग किशोरदा के आवाज में, और साथ ही साथ लता।

गाता रहे मेरा दिल कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन फाहन सारे पर आप चुन है।

सानिध्य पर आज चुन है। आप सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। मिले जुले गीतों के साथ मैं आपका सेवा करने वाला हूँ। सुबह लेको कभी शाम लेको,

0: हर घड़ी करूं मैं तेरा इंतजार, कभी कभी इंतजार करते करते दिन बीत जाता है और रात भी कट जाता है, फिर भी इंतजार वो इस तरह से रुक जाता है। अखियों से गोली मारे, आप सभी को एक शुभ दिन प्रगट हो।
1: एक्टिव स्किन केयर एक्टिव्स फॉर एन इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन।

जिसका डांस स्टाइल अलग है दोस्तों, रवीना टंडन के साथ काम किया फिल्म दुल्हे राजा में, उसी फिल्म का सॉन्ग अभी मैंने आपके लिए पेश किया। जान की कसम सच कहते हैं हम, खुशी हो या गम बात लेंगे हम आधे आधे, किशोरदा एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर दोनों के आवाज़ों में।

बात लेंगे हम आधा आधा, क्या वादा है। मत करो वो वादा जो तूने पूरे न कर सको, मत करो वो वादा जो तूने पूरे न कर सको, मत करो प्यार जो तुम निभा न सको।

तू मेरा हीरो नंबर वन। जब दिन नहीं कटते या रात नहीं गुजरते तो आपको क्या करना है, फाह और हिंदुस्तानी पर चॉइस के लिए आप रेडियो, और पूरे तरह से आपका दिन कट जाएगा और रात भी गुजर जाएगा। हमको तुमसे हो गया है प्यार, ये बात सही है या नहीं?

0: बोल।
1: हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे क्या करना है, जल्द से जल्द शादी कीजिए, हो न सके कि ये प्यार जो है चिड़िया की तरह उड़ जाए। दोस्तों, किशोरदा, लता मंगेशकर, राफी साहेब और मुकेश, ये चारों जो उन दिनों में बॉलीवुड को हाथ में थमा था, ये चारों के आवाज में ये गीत आप अभी सुना, हमको तुमसे हो गया प्यार क्या करे। उसके बाद मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाता है।

की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, क्या समझा नहीं समझा जरूर समझ गए होगे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबा पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गए। मसी मोहम्मद रफी की आवाज में साथ आशा जी

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। जब गीत मैंने सुना तो एक छोटा सा शायर याद हो गया दोस्तों। अंधेरा गया सूरज निकल आया, अंधेरा गया सूरज निकल आया, है बेवफा तूने प्यार मुझसे किया, तूने प्यार मुझसे किया और शायरी उससे कर डाला। क्या बात है।

उसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, मिर्ची कहाँ लगा, आँखी में या होठ पे या पता नहीं, लेकिन मिर्ची लगा है दोस्तों। अब की बार हम तुम युग युग से गीत मिलन के गाते रहेंगे। सुनील दत्ता नूतन ने काम किया फिल्म मिलन का सॉन्ग नाइटिंगेल लता एंड माइटी मुकेश के आवाज में आप सुनेंगे। सुनील दत्ता दोस्तों ये कलाकार फिल्म एक्टर बने से पहले ये रेडियो पर अनाउंसर का काम करता था।

ऊंच नीच कला न जाने जांच सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाउन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरिए नाम से सचिकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारी मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों इस ट्यून से आपके तो पता चल चुका होगा कि हम शुरुआत कर चुका है अपना सूरीनाम और देश विदेश के समाचार के बारे में।

0: हम तुरंत तुरंत तुरंत जानते हैं सूरीनाम के ओर भैया नई खनन दर्तक यारख एक अनमन इस इन गस्लोटन फॉर स्टेलसल मातक में सांदन इन कॉन्क्यूबिने बाप रे बाप ओके बिचारा के बन हुई गया एक औरत है अन फ्राउ इन मेरसोर और उभी बेई बीरन हेल्प मांगी सेगा सिपाही लगे शिकायत करी सेगा कि ओकर घर में एठार वोनिंग विस्टोन स्नापन बोलेगो 39 यार के कॉन्क्यूबेन बीएस बा वर्ड इरफान फरदाग हर stelselmatig te hebben mishandeld, haar mobiele telefoon te hebben gepakt en haar in huis hebben afgesloten. Oké, ghar mein aurat ya ke maratra bhaiya aur jahalnis, oké, ghar mein tala kar de wat raha. Sanichar ki 29 augustus ke baat hai, aan het licht nadat de politie een melding kreeg dat een slachtoffer van mishandeling zich op een adres in de resort bevond, de vrouw haar hartwoning weten te verlaten. Het was naar de buren gegaan om hulp te zoeken te kono rakam apan ghar mein se bichari nikar ke aur buren lage gaye hai to hulp aanvraag kari se bole volgens het voorlopige onderzoek beschuldigde verdachte zijn concubine ervan dat zij overspel zou hebben gepleegd met een vriend aan wie hij ongeveer een week eerder onderdak had geboden. De vrouw ontkende die beschuldiging aur diabole ichiche na hui sake hai aur okar concubine jo raha bhaiya बोले है का कोनो दूसर से एक लफड़ा रहा तो एकर बारे में सिपाही जो नहा पुलिसी रिहो ओ सूरीनाम के और बोले गैल है फरफोल्कस टेल्सन मातक सो हेवन में सांदल अब एनक मोमेंट सो है ओक हर टेलीफोन हेवन आफको पाक में से ये अच्छा बात ना है अनखिफ्त भेल है और बोले फरदाख्त नोक दिख सेल्फ द आफन रुके से हम पकड़ ले सेगा जो बोले नसान भूत रहा भैया अंदर अने अल्कोहल रहा अने फरकेरन hulpofficieren ook pakken geban kari. Zijn vrouw kreeg een medische verklaring op haar naam en werd voor behandeling doorverwezen naar de plaatselijke artsmensen te ibahuduke baant he. Ki ee kaam kari se de mia pakken geban kalle raha. Aur dekho bhaiya ek bromfitser bhaiya ek bromfitser he. Bole hai ga aanrijding kari se aur jai ke gotro me ghus ga bhaiya baland in an goot. Dukke baant he bhi he donderdag ke baant he. Ego mes en twee wielen met een bromfiets eraan, meer fel weg mee. En ik ook een aanrijding kerk gezegd, ik heb goed de ambulance bijzara gelegen. Natuurlijk ziekenhuis hem jaten hij DNV ke bare mee. Waarschuw correct zijn naam ke veiligheid dreigen herkennen voordat de crisis uitbreekt. DNV toen jane kontje bhaiya DNV ke matlab jane hai usse veiligheid ke hai ga Directoraat Nationale Veiligheid ke admi hai is juist een proactieve werkwijze nodig waarbij risicovoertuigen vroegtijdig worden herkend en informatie tussen veiligheidsorganisaties beter wordt gedeeld. De sipahi is een directoraat nationale veiligheid gewijzen. Zat en zat bole he dosto uitgang staat centraal tijdens de nationale veiligheidsconferentie ke 10 tarik of 4 tarik september me congres hal me seven ekar bare me baanchit kalera minister bhi wahan paiga van justitie en politie aur hem de kil fee pe bhi wahan pe ba aur communicatie dienst bhi wahan hai conferentie pe bole he ga het onder meer om criminaliteit transnationale en ondermijnende criminaliteit, cybersecurity, maritieme veiligheid, energie, bolle kritieke infrastructuur, economie en voedselveiligheid en zekerheid. Kebane me seven hua baatchit kari se janta. Hanis Manorat, hua minister van Justitie en Politie ke raha. Bolle hega verwacht kare ki bijeenkomst, bolle hega overleg blijft. Aur bolle hega waarnemer DNV directeur jo hega Mayur Gerard Kalka stelde de veiligheid van het land alleen effectief kan worden beschermd, bolle wanneer betrokken instanties dreigende eerder signaleren en gezamenlijke handeling. To je baat hega DNV ke bare mein hamari janta jo aap log ko hum bata dete hain. अब देखो भैया एक 75 यार के गाड़ी चलावत रहा भैया और जाए के एगो 17 बरिस के लुंडा के ओतो से मारी से लड़कवा मर गए है भैया 75 यार के रमिया रहा 17 बरिस के गो लुंडा पर ऑफिस चलावत रहा बोले औ तो मोबिलिस बत्रकन वास बेन आंध रहे दे फन हो को हिस्ट्रा 17 यार के पर ऑफिस से बेचारा मर गए बड़ी दुख के बात है 31 ऑगस्ट के और बोले ब्रोफिस्टर हो फन हो को स्ट्रास से जात रहा मूलन पाथ पे एन आर द हाफन लान जात रहा और ये रमिया गैल है और बोले एक ऑफ दैट मोमेंट में से ऑटो का पार्केट ऑफ एट बैरम रहा जैसे द ब्रोफिस पाथ एंड ऑटो पाथ के बीचों में पार्केट कर ले रहा और जब ब्रोफिस हुआ अब जात रहा द ऑटो देख वास बखना दट रेड ऑप ऑटोमोबाइल इज वेग ओम अन इट फॉरकेयर देल टू नेमन वो घुसल जाए के ऑटो वाले के मांगे फॉरकेयर वाम जाए जोन ब्रोफिस हुआ के और ऑटो बनवा के बीचों पार्केट कर ले रहा फोल्कर जिस नाम से पुलिस फरलीन इन द बस्टूर daarmee geen voorrang aan het overige verkeer. Hij maakte een bocht naar rechts met de bedoeling via de doorbraak de westelijke rijbaan te bereiken. Daarbij ontstond de aanrijding met de bromfiets. Oribichara, Marge, het Satrabriske. Als je niet oplet, dan gaat dit soort dingen gebeuren, mensen. Toen je bij die doekje waart. अब देखो एगो 24 बरिस के औरत भैया ओकर ओके कितना छुड़ी मारी से सबन 24 यार मन स्टेक एगो 24 यार आदमी अपन फ्रेंड के फ्रेंडेन के छुड़ी से बहुत भोंकी से नानी ब्रोको पोंदो के बांध है और ब्रोको पोंदो में एगो दोरपू के नाम बा द्रिपदा झगड़ा भैले भैया अंदरिशी ओवर सेक्स इन दौर ऐड खोलो ऊपर एरस्ट जहां यरमिया पद्री इन तो देख यार का फ्रेंड इनके और छोड़ी से बड़ा भोकाई भोकी से 27 तारीख ऑगस्टस के बाद थे हमारे नानी तो ये भी तो दुख के बाद थे दोस्तों सिपाही पकड़ के ले गए हैं और बोले फोर वेयर भी मिल गए हैगा अकादमी में फिर इन तो देख यार का रमिया के पकड़ के बन भे ना पतावे हैं कि काहे के झगड़वा सेक्स के ऊपर भइल है बाकी वेल लिखल ओवर सेक्स इज दिस कबीर मेंसे तो ये बात है सुरीनाम देश ब्रो को पोंदो के gedetineerde bhaiya finden kluis tijdens schoonmaakwerkzaamheid gedetineerden john jahliwan bhaiya schoonmaak karat raha कहाँ पे वेख ना रही बैरक में हुआ पे सब को क्लैश पाई से जहलीवन पाई से भैया और काम करते में पाई से जहाँ पे सिपीर लोन भी अन्वेषक रहा और बताए गए क्लैशों में 5x5 सेंटीमीटर के उतरा बढ़का रहा द क्लैश फरतून खींच से बार स्पोरन फॉन फोर्सिंग इस फॉर आल्स नॉक नीट का ओपन कहीं खाली है ना रहा हो भैया लेकिन क्रांति में लिखाई गई है कि एगो क्लैश मिलल है हमारे जनता तो जो क्लैश मिलल मिल नहीं सक कि उमा पैसा रहा कटलिस के कटौल भइल है नानी कटलिस के कटौल भइल है नी खन 3 यार का फरदाख्त एगो नी सेशन डर तक यार का आदमी के कटलिस से खूब छपकी से भाई बड़ा कटाई काटी से ई भइल हैगा फ्लोरस स्वकन स्ट्रात में झगड़वा भइल है नहीं खतिन यार के एगो लौंडा जाए के एक बड़ी कटाई काटी से झगड़ा में कटलिस निकारी सबन खिलवाड़ न करे सुरीनाम देश में भैया कटली से घास उस काटे की सब मनाई हुआ काटे के शुरू कर दे इसे एक बारे में सिपाही पकड़ करके ले गए हैं अब देखो का हुए है और का ना हुए एक बारे में हमारी जनता आप लोग की ओर हम जा रहे हैं उलर्स की ओर उलर्स के ओर हम जाएगा जोन फे यहाँ पे के अंदर फोर्सेटर वार नेम इज फोर्सेटर है दोस्तों और फे यहाँ पे फोर्सेटर ग्लेन उलर्स बोले हैं तो जाने हैं हुआ पे सबन के फरकीसिंग हुई कि पार्से ही फोर्सेटर के हुई तो इस समय पे फे यहाँ पे फोर्सेटर हैगा ग्लेन उलर्स स्लाइड नीट ऐ दत है ना है पेर्स पार्टी कांग्रेस जोन मई में होगा 2027 में अपनी फोर्सेटर फॉर द पार्टी वार्ड इन इंटरव्यू स्टैंड फास्ट रेडियो पे बोली सेगा कि बोले कि वो होएगा उलझ बना दरक्त दसे है देखो फोर्सेट स्काफ खीन इंटरने interne functie is hij naam na het overlijden van Janssen Sokie de voorzitterschap. Orbele Oeders ligt de prioriteit momenteel bij de voorbereiding van het congres. Op Kehoi Kenahoi, een verkiezing met Kejitiga Oeder Matura Mange, Oeder Kabole, Janneke Gayadine Mange, Oeder Bhaya Sharman Mange, Ieder Oelers Mange. Over zijn eigen toekomst houdt Oelers de mogelijkheid open. Oelers waarschuwt tegelijkertijd voor een vroegtijdige interne verkiezingsstrijd. Volgens hem kunnen de vroege kandidaturen leiden tot verdeeldheid binnen de partij. Hij pleit ervoor dat de potentiële kandidaten zich eerst door hun inzet en werkzaamheden binnen de VHP profileren. Mensen, beleidsvisie John Rijka strategie van richting 2030. Hem jij ter buitenland. Minister Tsjechië onder vuur door interview met vermomde activist. Tego Janneke Tsjechië, de minister van Buitenlandse Zaken. Ook is ze onder vuur gekregen van ja, omdat we een interview kregen. Bolle hega omstandigheden meedeed aan een nep interview. Bolle ego activitist. Groep deelde beelden waarop te zien.
1: Live vanuit Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
0: Autoverhuurbedrijf in Suriname. Amalia Autoverhuurbedrijf. Magentaweg 259 per agar aapko Suriname. Jana hai. Gaadi huur karna hai. To aapko jana padega. Magentaweg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf A.

न जाने ऊंच नीच कला न जाने ज्ञान सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी नाम से सचिकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारी मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों इस ट्यून से आपके तो पता चल चुका होगा कि हम शुरुआत कर चुका है अपना सूरीनाम और देश विदेश के समाचार के बारे में।

हम तुरंत तुरंत तुरंत जानते हैं सूरीनाम के ओर भैया नई खनन दर तक यारख एक अनमन इस इन खस्लोतन फॉर स्टेलसल माथक में सांदन इन कौन की बीने बाप रे बाप ओके बिचारा के बन हुई गया रहा एक औरत है अन फ्राउ इन मेर्स और उभी बे बीरन हेल्प मांगी सेगा सिपाही लगे शिकायत करी सेगा कि ओकर घर में एठार वोनिंग वेस्टोन स्नापन बोले को नहीं देर तक यार के कॉन्क्यूबेन बीएस बा वर्ड इरफान फरदाह हर स्टेलसल मातक ते हैबन मिसांदल हर मोबाइल टेलीफोन ते हैबन खपाक एन हर इन हाउस हैबन अफ़क़स्लोटन ओके घर में औरत या के मारत रहा भैया और जहल नेस ओके घर में ताला कर देवत रहा सनिचर के नहीं अगस्तस के बाद है आने लिख ना दा दा पुलिसी अन मेल्डिंग करी दत अन स्लाख्टोफर फन मिसांदलिंग सिख ओप अन अड्रेस इन द रिसोर्ट बफोंड द फ्राउ हर हट वोनिंग वेटन ते फरलाटन इट वास नार द बीरन गगान ओम हेल्प ते सुकन ते कोनो रकम अपन घर में से बिचारी निकर के और बीरन लगे गेल है ते हेल्प अनफ्राग करी से बोले फोल्गस एट फरलोपिग ओंडरसोक बस्कुल्ड द फरदाख्ते सेन कोन कु बीने एरफान दा से ओवरस्पेल सो हैबन कंप्लीट मिट द फ्रीन अन वी है ओंगेवेर अन वीक ईयर अंडर दक हट गबोडन द फ्राउ ऑन कंदे ऑनकेंदे दी बस्कुल्डिंग और दिया बोले चीजें ना हुई सके है और उकर कौन क्यों बिना जो रहा भैया बोले है का कोनो दूसर से एक लफड़ा रहा ते एकर बारे में सिपाही जो रहा पुलिसी रिहो ओ सूरीनाम के और बोले गैल है फॉर फोकस टेलसन मातक सो हेवन में सांदल अब इन मोमेंट सो है ओ खार टेलीफोन हेवन आपको पाक में से ये अच्छा बात ना है अनखिफ्त भैल है और बोले फरदाख तो नोक दिख सेल्फ द आफन ओके से हम पकड़ लीजिएगा जो बोले नशान भूत रहा भैया अंदर अने अल्कोहल रहा अने फरकेरन हेल्प ऑफिसर लोग के पकड़ के बंद करी से फ्राउ क्रीक मेडी से फरक्लारिंग ऑफ अन नाम एंड वेयर फॉर बिहैंडलिंग दौर फरवेशन नार्द प्लांट्स के आर्ट्स में से ते ई बहुत दुख के बात है कि ई काम करी से दमिया पकड़ के बंद कर ले रहा और देखो भैया एक ब्रॉम फिचर भैया एगो ब्रॉम फिचर है बोले हैगा आ रेडिंग करी से और जाए के गोत्रो में घुस गए भैया बलंत इन अन हो तो दुख के बात ही भी है दोनों दाख के बात है एको मैं से ट्वे बिले मेरे को प्रॉफिट रहा मेर फैल वैख में और एको ओ तो अराइडिंग करके जाई के घुस के अम्बिलांस बिचारा के लेगे नतुलक सिकन है समझाते हैं डी एन वी के बारे में वास्क्यू करे सर नाम के फेलक से ड्रैगन हेर कैनन फॉर दैट द क्रिस लाइव फ्रॉम देन हाग 12 हिंदुस्तानी रेडियो

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी नाम से सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारी मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों इस ट्यून से आपके तो पता चल चुका होगा कि हम शुरुआत कर चुका है अपना सूरीनाम और देश विदेश के समाचार के बारे में।

हम तुरंत तुरंत तुरंत जानते हैं सूरीनाम के ओर भैया नहीं खनन दर्तक यारक एक अनमन इस इन खस्लोतन फॉर स्टेल्सल मात्र में सांदन इन कौन क्यू बीने वहाँ पर बाप उके बिचारा के बन हुई गया एक औरत है अन फ्राउ इन मेर सौर और उबहीव बै बीरन हेल्प मांगी सेगा सिपाही लगे शिकायत करी सेगा कि ओकर घर में एठार वोनिंग वेस्ट ऑन स्नापन बोले को नहीं इन दर तक यार के कॉन्क्यूबेन बीएस बां वर्ड एरफान फरदाह हर स्टेल्सलमातक ते हैवन मिसांदल हर मोबाइल टेलीफोन ते हैवन खपाक एंड हर इन हाउस हैवन अफ़क़स्लोटन ओके घर में औरत या के मार रहा भैया और जहल नेस ओके घर में ताला कर दे वत रहा सनिचर की नहीं इन तुम इंदौर कोशिश के बात है आने लिख ना दे द पुलिसी अन मेल्डिंग करी दैट एन स्लाख्टोफर फ्रॉम मिसांदलिंग सिख ऑफ एन एड्रेस इन द रिसॉर्ट बिफोंड द फ्राउ हर हैड वोनिंग वेटन टू फॉरलाटन इट वाज नॉट द buren gegaan om hulp te zoeken te kono rakam apan ghar mein se bichari nikar ke aur buren lage gail hai to hulp aanvraag kari se bole volgens het voorlopige onderzoek beschuldigde verdachte zijn kon cubine ervan dat zij overspel zou hebben gepleegd met een vriend aan wie hij ongeveer een week eerder onder dak had geboden de vrouw ontkende die beschuldiging aur dia bole ichiche na hui sake hai aur okar kon cubine jo raha bhaiya bole का कोनो दूसर से एक लफड़ा रहा तो एक बारे में सिपाही जो रहा पुलिसी रही ओ सूरीनाम के और बोले गैल है फॉर फोकस टेल्सन मातक सो हेवन में सांदल अब इन मोमेंट सो है ओ खार टेलीफोन हेवन आफ को पाक में से ये अच्छा बात ना है अनखिफ्त भैल है और बोले फरदाख तो नौक दिख सेल्फ द आफन ओके जब हम पकड़ ले सेगा जो बोले नशान भूत रहा भैया अंदर अल्कोहल रहा फरकेरन Hulp officier in elke pakkerke bankeris. Een vrouw kreeg een medische verklaring op haar naam en werd voor behandeling doorverwezen naar de plaatselijke artsmensen te Ibahuduke Bante. Ki ikam karise de mia pakkerke bankeler ha. Oh, deko bij jij bromfietser, bij jij bromfietser he. Bole hega aanrijding karise o jaike gotrome guzga bij jij balant in een hout. Boekke Bante, bij het donderdagke Bante. Ego met zijn twee wielen. मेरे को प्रॉफिट रहा मेर फेल वेख में और एक ऑटो का राइडिंग करके जाए के घुस के एम्बुलेंस बेचारा के लेंगे नेचुरल सिकन है समझाते हैं डीएनवी के बारे में वास्क्यू करे सर नाम के फेलक से ड्रैगन हरकेनर फॉर दैट द क्राइसिस आउटब्रेक डीएनवी तो जाने कौन ची भैया डीएनवी के मतलब जाने हैं उस फेलखैत के हैगा डायरेक्टरेट नेशनल फेलखैत के आदमी है इस यस एन प्रोएक्टिव वर्कवेज नोडक waarbij risico voertuigen vroegtijdig worden herkend en informatie tussen veiligheidsorganisaties beter wordt gedeeld. De Sipahi is een directoraat nationale veiligheid gewijzen. Zat is aan het he, dosto uitgang staat centraal tijdens de nationale veiligheidsconferentie ke 10 tarik of 4 tarik september me congres hal me se bane ekar bare me banchit kalera minister bhi waha paiga van justitie en politie aur hem de kil VIP bhi waha pe ba aur communicatie dienst bhi waha hai conferentie pe bole hega het onder meer om criminaliteit transnationale en ondermijnende criminaliteit, cybersecurity, maritieme veiligheid, energie, bolle kritieke infrastructuur, economie en voedselveiligheid en zekerheid. Waarom is er een hoa baatjeet kerise jantaan? Hanis Manorat, hoa minister van Justitie en Politie kerahaan, bolle hega verwacht kereke bijeenkomst, bolle hega overleg blijft, o bolle hega waarnemer DNV-directeur John hega majoor Gerard Kalkan stelde de veiligheid van het land alleen effectief kan worden beschermd, bollen wanneer betrokken instanties dreigende eerder signaleren en gezamenlijke handeling. Toe je baan tegen DNV gebaren mee, hemari jantaan jo aanplukken, hem betaal deten heen.
अब देखो भैया, एक 75 यार के 75 यार के गाड़ी चलावत रहा भैया, और जाए के एगो 17 बरिस के लुंडा के ओतो से मारी से लड़कवा मर गए है भैया। 75 यार के रमिया रहा 17 बरिस के गो लुंडा पर ऑफिस चलावत रहा। बोले ऑटोमोबाइल्स बतरोकन वास बेन आज रही दे फन हो को हिस्ट्रा 70 यार खबर ऑफिस से बेचारा मर गए बड़ी दुख के बात थे इन डरत को खिस्त के। और बोले ब्रोफिस्टर हुफन हो कष्टरा से उजात्रा मूलन पात पे नर्द हाफन लान जात रहा और ये रमिया गैल है। और बोले एक ऑफ दैट मोमेंट में से ऑटो खपर केर और फिर बैरम रहा जैसे द ब्रोफिस्ट पात एंड ऑटो पात के बीचों में पर केर कर ले रहा। और जब ब्रोफिस्ट हुआ अब जात रहा द ऑटो देख वास बखना दे रही द ऑफ ऑटोमोबाइल इस वेग ओम अन फरकेर दिल ते नहीं मन वो घुसल जाए के ऑटो वाले के मांगे फरकेर वाम जाए जो ब्रोफिसुआ के और ऑटो बनवा के बिचुआ पर केयर कर ले रहा। फोलकज सिरनाम से पुलिस फरलीन ने बस्तियों दार में खेन फोरा आने ओवर का फरकेर है मांगते अन बोख ना रेक्स में द बदुलें फिया द दौर ब्राख द वेस्टलक रही बांत बराई दार में और स्टोंड द आंध्रेडिंग में द ब्रोफिस और बिचारा मर गए है 17 बरिस के आंचे नहीं ओपले द खाद दे सोर दिंग इसको बेरे में से। तो ये बड़ी दुख के बात है। अब देखो एगो 24 बरिस के औरत भैया ओकर ओके कितना छुड़ी मारी से सबन फिरन त्वेंत किया रखा मन स्टेक एगो फिरन त्वेंत किया रखा आदमी अपन फ्रेंड के फ्रेंड देन के छुड़ी से बहुत भोंकी से नानी ब्रोको पोंदो के बांधे। और ब्रोको पोंदो में एगो दोरपू के नाम बा द्रिपदा झगड़ा भैले भैया अंदरिशि ओवर सेक्स इन ए दौर एट खोलो पर अरेस्ट जहां यरमिया पर द्रियन तो देख यार का फ्रेंडिंग के और छोड़ी से बड़ा भोकाई भोकी से 27 तारीख ऑक्सिस्टस के बात है हमारे नानी। तो ये भी तो दुख के बात है दोस्तों। सिपाही पकड़ के ले गए हैं और बोले फोर वेयर अब भी मिल गए हैगा अकादमी में फिरन तो देख यार का रमिया के पकड़ के बन भे ना पतावे हैं कि काहे के झगड़वा सेक्स के ऑफर भइल है बाकी वेल लिखल है ऑफर सेक्स इज दिस कबीरत में से। तो ये बात है सुरीनाम देश ब्रो को पुंदो के gedetineerde भैया vinden kluis tijdens schoonmaakwerkzaamheid gedetineerden John Jahliwa ने भैया schoonmaak करत रहा कहां पे वेख ना रही बैरक में हूं आप से बने को क्लेश पाई से जहलीवन पाई से भैया और काम करते में पाई से यहां पे सिपीर लोन भी अनवेशक रहा। और बताए गए क्लेशो में 5x5 सेंटीमीटर के उतरा बढ़का रहा द क्लेश फर्तून द खींच सिखबार स्पोरन फॉर फोर्सेरिंग इस फॉर आल्स नॉक नीट का ओपन कहानी खाली है ना रहा भैया लेकिन कलांटी में लिखाई गई है एगो क्लैश मिलल है हमारे जनता। तो जो क्लैश मिलल मिलनी से कि उमा पैसा रहा कटलिस के कटौल भइल है नानी कटलिस के कटौल भइले नीखन 3 का फरदाख्त एगो नीख सेशन डर तक 11 का आदमी के कटलिस से खूब छपकी से भाई बड़ा कटाई काटी से ई भइल हैगा फ्लोरस स्वकंस्ट्रात में झगड़वा भइल है नहीं खतिन यार के एगो लौंडा जाए के एक बड़ी कटाई काटी से झगड़ा में कटली निकारी से बन खिलवाड़ ना करे सुरीनाम देश में भैया कटली से घास उस काटे की सब मनाई हुआ काटे के शुरू कर दे इसे एक बारे में सिपाही पकड़ कर के ले गए हैं। अब देखो का हुए है और का ना हुए एक बारे में हमारी जनता। आप लोग की ओर हम जा रहे हैं उलर्स की ओर उलर्स के ओर हम जाएगा जोन फे यहाँ पे के अंदर फोर्सेटर वार नेमस फोर्सेटर है दोस्तों। और फे यहाँ पे फोर्सेटर ग्लेन उलर्स बोले हैं तो जाने हैं हूँ आप ऐसे बन के फर किसी हुई कि पार्ट ही फोर्सेटर के हुई तो इस समय पे फे यहाँ पे फोर्सेटर हैगा ग्लेन उलर्स स्लाइड नीट आई दैट है ना है पेर्स पार्टी कांग्रेस जो मई में होगा 2027 में अब न्यू फोर्सेटर फॉर द पार्टी वार्ड इन इंटरव्यू स्टन फास्ट रेडियो पे बोली सेगा कि बोले कि वो होएगा उलझ बना रखते दस है हेड का फोर्स है तो स्काफ खीन इंटरन
interne functie is hij naam na het overlijden van Janssen, zo kreeg de voorzitter Schaap. Orbele Oeders ligt de prioriteit momenteel bij de voorbereiding van het congres. Op Kehoi Kenahoi, een verkiezing met Kejitiga, Oeder Matura mangen he, Oeder Kabole he, Janneke Gayadin mangen he, Oeder Bhaya Sharman mangen he, Ieder Oelers mangen he. Over zijn eigen toekomst houdt Oelers de mogelijkheid open. Oelers waarschuwt tegelijkertijd voor een vroegtijdige interne verkiezingsstrijd. Volgens hem kunnen de vroege kandidaturen leiden tot verdeeldheid binnen de partij. Hij pleit ervoor dat de potentiële kandidaten zich eerst door hun inzet en werkzaamheden binnen de VHP profileren. Mensen, beleidsvisie John Rijka strategie van richting 2030. Hem jij ter buitenland. Minister Tsjechië onder vuur door interview en met vermomde activist. Tego Janneke Tsjechië, de minister van Buitenlandse Zaken, ook is hebben onder vuur gekregen van omdat we een interview kregen. Bolega omstandigheden meedeed aan een nep interview. Bolego activitist. Groep deelde beelden waarop te zien is dat minister Makinka tegenover een man ziet die een bifa muts en zonnebril draagt. Interview was een actie. Or Bolega die zich presenteert als een groep onderzoeksjournalisten willen de activisten stellen dat de minister laks omging met de veiligheidsvoorschriften en zijn enige lijfwacht wegstuurde zonder de ruimte te laten controleren. Daar zouden nepwapens explosief verstopt zijn geweest. Ichakeke baanchit hue hamare janta Nederland verplaatst $10 miljard aan goud uit de Amerika. Makaheke janta $10 miljard uit de VS. Makaheke hialikale Nederland miljarden dollar ke sona Amerika Canada me sab aur kone krijg Canada aur Amerika me dhaler ab sab mange jaye Verenigde Koninkrijk met dhare Engeland mee. Maar ki kahe khatin kahe mange dhare Nederland ke besitting 83,7 miljard dollar ke sona in binnen en buitenland ke reserves u dhari se centrale bank joan hega Nederland ke budhwar ke bole verhuizen we sab chijoen bole ernstige crisis ba. Hoewel DNB niet specificeerde welke crisis er zouden kunnen zijn, voert Amerika momenteel ego felle handelsoorlog met Canada. Is het verwikkeld in een oorlog met Iran en heeft de recent militaire operatie geleid in Venezuela en rond Cuba. Toen je betaalde Canada se en Amerika se ego bedka probleem he en ook maar eens onwaai gaskawe jijse betaalde he daarnaast zijn de spanning Europa Amerika se ega toegenomen sinds het begin van de Amerikaanse oorlog in Iran van februari zo he. Trump ontevreden is over het terughoudende optreden van Europese bondgenoten kebare me en president Jonne Olaf zei in de verklaring bole hega Nederland bezit 612,4 ton goud ter waarde van €72,2 miljard, $83,8 miljard. Die goud dient als onderpand in tijden van crisis, wanneer reguliere financiële systeem kunnen vallen. Oei, Nederland ook het risico als onderpand. Kun je crisis uit ook een gebruiker pijga. Landen spreiden hun goudreserves over verschillende locaties als onderdeel van de risico diversificatie kebare me he. Toen je betaalde hoe het goud verplaatst zal worden, mensen, verhuizing betrof goud ter waarde van €10,11 miljard eind 2025. Dit bedrag was op woensdag 1 uur Nederlandse tijd €10,34 miljard waard, mensen.
तो कैसे फसेगा 59 टन गोल्ड के वांछित हुए हम अर्जेंटा न्यूयॉर्क से गफॉलग दूर आनकोप इन लंदन दानास वर्ड मेयर दा 27 टन गोल्ड ongeveer 3,84 miljard dollar fysiek aan Amerika en aan Canada naar zes getransport. Een vergelijkbare hoeveelheid de transport via de Churuan ket aanki per ki kaise hum kar le tulon janos ke phol pe 197 ketra sona looter ha bhaiya en het was een hele grote bende dat weten jullie mensen ab ki kaise kari kuch pata na hai kaise kari kaise na kari hamare janta to ye sab baat hai hamare janta सुरिनाम के ना है नीदरलैंड के जो सोना के बारे में है हमारी जनता तो साथ ही साथ हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर जो चलते हैं तो अब देखो क्या हुआ हमारी जनता हम जाते हैं सुरिनाम के मिसिकाबा के और भैया शशाल साख के जो यानी कि मिनिस्टर है मिसिकाबा के बोले वे हैं toestemming van RVM, Raad van Minister, om ziekenfondsdirecteur met ontslag te sturen. Bolleuke ontslag, Rudrakant Umrauke, bolle Usep, die enkele maanden terug als non-actief werd gesteld als directeur van de staatsziekenfonds en alsnog de gelegenheid kreeg om zich te verweren, wordt toch ontslagen. Ook bolle André Misikaba, bolle Hamlun, welzijn van arbeid, bolleuke ontslagkelibati, bolle Usakwa Kerseke, maar die is al ontslagen. Bolle Misikaba, Boetwaarke, RVM, bolle Hega. Zaak zo wordt aangepakt omdat minister in het verleden probleem heeft gehad met de mensen die zijn afgezet mensen toen op Umrao werd in februari non-actief beschuldigd te zijn van de sluiten van arbeidscontracten van ruim 100.000 SRD per maand met directieleden van andere staatsbedrijven. Toen Jezep hij baantjeet hij Suriname ke staats ke bare mein अब देखो भैया अफीना बांग का करे मेरे वर्कर्स के बोले गेवन लेगे स्कूल मुर कलररेक मेक ओवर बतावे यहाँ पे भैया फीना बांग तुलन जानो हैगा चिनुआ के बांग का सुरिनाम देश में और ये बोले हैगा बोले फ्राई वेलक उस अब इंसेट कर इसे का सिंट ली लिटविना स्कूल में बोले द मेडिवर्कर रेल्डन हुन दाखलसे वर्कसामहीदे तैलक इन फॉर फेरफ क्वास्टन एंड फ्लिंक दोषी फन क्रिएटिविटेट कि उस अब जाए हुआ पे मुर फेरफी करे फेरफी से स्कूल में और बोले Samen gingen zij aan de slag met lege muur op een schoolterrein. Orbatawe Fina Bank draait het initiatief niet alleen om het eindresultaat, maar ook om de tijd en energie die de medewerkster hierin hebben gestoken door samen te hadden handen uit de mouwen te steken. ये बातचीत है फीना बांग के बारे में हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता जो आप लोग को हम बता देते हैं हम चलते एक गीत की ओर हम भेजी

तो भजैली है और बोले क्या क्या नहीं आते हैं, तो आपको हम ये गीत को बस सुना ही दिया है। हमारे प्यारे प्यारे जनता, हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर। देखा जाए भैया, न्यू पॉलिसी पोस्ट एगो आयल है सूरीनाम देश में, और ये है अइरखां सेंट्रम परमारिबो मुस्नेलर ऑप्ट्रीडन में इंसिडेंटन मोगलिक तमाकन, और एगो कंटेनर ने से एगो बन के बनाई के सबन धरी से ये बातचीत हो रहा है। और परमारिबो में ये बातचीत हो रहा है। हमारे जनता Volgens het Korps Politie is het vestiging van hulppost besloten vanwege drukte en toenemende activiteiten. Ke bare mein hai, yani paravariyon mein bhaiya tu jaane hai kitna chor chohari hai, to tulon to jaano hai, to ohi ke karan yani ki extra policy

जी हाँ दोस्तों, तो हम आप लोग को बता देते हैं कि और आगे क्या क्या होता है वृक्ष के बारे में। विरोक्ष तालचस में दुर्लभ बौद्धम ऐच सुरीनाम ई कौंची भैया सबन पाई से वृक्ष ऑन दैट इन विरोक जो हम लोग विरोक बारे ला भैया जो नदमी अपन घर में विरोक बारे पूजा पाठ खात वो कर खातीन विरोक्ष कालचस में दुर्लभ बौद्धम ऐच सुरीनाम आई ला। अब देखो कौन चकल से नीदरलैंड के दुआने पकड़ी से ऑनलाइन वृक्ष आन खतरों दी बेहद विसोंदर मनीर वार फर्स्टॉप एगो विरोक्ष खालचस में छोटा छोटा कुमकी है जो विरोक बरे है द खालचस ब्लीक अंत से एनफोर्स इन फन दुबल बौदम वार इन फॉर दो फन मिडल वार इन फॉर बोरखन दुई दुई बौदम रहा हमार भैया विरोक में दुआ न मांगते द फोंस ब्लीकन बकेन फिया फेसबुक और बोले फोटो फन ऑन द स्केप्ट खुदरन deze wierook overschaaltje brachten je heel en brachten je wel heel snel en hogere sferen. अब देखो यहाँ बतावे हैं नीदरलैंड के दुआने कहाँ कहाँ पावे भैया वृक्ष फ्लैशेस दीत में पावे हैं ब्लांद्रे में पावे हैं कुकुही में पावे हैं कड़ाबू में पावे हैं पालम दारू में पावे हैं झुरमछरी में पावे हैं फ्रुख्त में पावे हैं ढोलक में पावे इंस्ट्रूमेंट में पावे हैं कैसबरोद में पावे हैं सिर खुद में भैया जो नुआ पे आम उम सिर में धरन ओमा पावे हैं नरियर में पावे भैया पिन्ना सांबल में पावे हैं पॉपकॉर्न में पावे है झूर मछरी में पावे जो सब सुरीनाम से आवे है। बड़ा शर्म लगे भाई बतावत बाकी नीदरलैंड से पुलिस सब चीज में पावे है। अब जो नदमी मांगी भैया सच्चे के बनरियर पिए पिंडा सांबल खाए सब देखिए फरबूद हो जाए हम लोग कौन चिमलावे द आन खतरों पर फरदूफन मिडलैंड से हिंदू ने नीदरलैंड अथॉरिटी इन बसला खनोमन इन मिडल्स फरनीतक और बोले एर्दर ऑनडर्स को स्कैप्टन नीदरलैंड से दुआन ओक al drugs verstopt तो ये बड़ा अफसोस के बात है कि हमारे देश में देखो भाई सुरीनाम से पैसा कमाए खात कौन ची ना एक सब करे तुलन जैसे जानो है हम लोग के नीदरलैंड में फियोत है ऐसे सुरीनाम में ग्लात है दोस्तों ऑनडरसुक बस्कुलकिंग बाय तास लैंडफेल वक्त रिजल्ट नाफ एगो लैंडफेल हैगा भैया वो बतावे हैगा राफा मिनिस्टर के वेंदी यप आयु डायरेक्टर बा टेलीकम्युनिकेशन के अथॉरिटी सुरीनाम क्योंकि बोले तास बोले तो स्कॉर्सन नीत हीव को होनोनेर मुटन सोवेल द डायरेक्शन आल्स राड फॉर कमिश्नर्स फॉल्क्स मिनिस्टर रेमोंड लैंडफेल फॉर ट्रांसपोर्ट बोले हैगा कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म इन वर्कसामहीन फोरसेटन और बोले यापा यू फॉर मन में बस्कुल के फनाइड द एफएम ओकन एकर

तो ये है क्रिसवन छेदी के आवाज में आप लोग को हम इस गीत को भी सुना दिया है। हमारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों,

दोस्तों एक verdacht Suriname ही में हमी है तो वहां एक verdacht is aangehouden voor diefstal iPhone 13 Pro Max के बारे में 25 तारीख भैया एक नहीं टेलीफोन लेकर जाए फोन 13 प्रो मैक्स चोरी करके भाग न्यूयॉर्क फोन वेक में 2 तारीख सितंबर की सिपाहियों के हीरा वेक में पकड़ ली भैया सोना के रास्ता का नाम है हीरा वेक वहां पे दौराई के जाए के सिपाहियों के पकड़ी से तो ये तो बहुत ठीक बात है भैया मन में खुद फॉर वार्निंग अफसर एक आदमी भैया ओके समझ दागे रहा अब देखो डायरेक्टर जो है के आनी सादी ऐस नाम सेवरे खवीजन डायरेक्टर फीकाई के बोले हैं फीकाई जो पार्लियामेंटेरियस है एनडीपी के नेचुरल असेंबली में बोले हैगा जो फेस क्यूरिंग्स इंस्टीट्यूट है जूलियट वोंगसोरे जो मलाइनी है बोले ओके चाहिए ओकर नाम सेफर करे के बोले फॉल्कस हार ब्लैक आउट एन अनफंक्लिक अंडरसुक दैट एर गेन स्प्राक इज गवेस फॉर फिनांशियले फ्रॉडलेसे हैंडलिंगन टरवेल द फॉर्मालिक डायरेक्टर ईर्डर डोर द हुइडिक रार फॉर कमिसारिस में दरगलेके बस्कुलकन जो जेन कॉन्फ्रेंटियर ते इस आदमी के बचावे भैया कि देश जाई के हुआ सुधारे है ये बड़ी दुख के बात है हमारे देश में एगो हील खसेन के सिपाही पकड़ी से दबूर बैठे में नानी खसेन वहां भर के पलवार वहां भर के पकड़ी से आन होल्डिंग फॉर ऑन फ्राइडे 28 अगस्तस 2026 प्लांट्स पुलिसी लॉस वार्स्क्यूम स्कूल तो भैया तब पलवार भर के जाए के सिपाही और पकड़ पाई से तो ये सब बात भी हो भैया और बताए गए हैगा SLM stopt seizoenvluchten naar Barbados per 30 september. Barbados pejon SLM ure bhaiya 30 september se vluchten ban ho jai. Paramaribo Georgetown Barbados me bole hega bekend ho jega. Suriname Airways volg aanpassing naar evaluatie van de geplande seizoenoperatie en maakt deel uit van het voortdurende netwerk. Over de luchtvaartmaatschappij laat meten Georgetown in Guyana te blijven bedienen. और भैया ये सब बात है सूरीनाम देश के जो आपको हम बताते हैं हमारा समाचार धीरे धीरे खत्म आने के हुआ एक दो समाचार और सुनाएंगे टीम सूरीनाम क्लार फोर साउथ अमेरिकन स्पेलर इन अर्जेंटीना अमेरिकन स्पेलर जो बा ऑडिशन 12 तारीख तक में 26 सितंबर 2026 में अर्जेंटीना में साथ साथ रामसरन वेटवेजिंग नोडक मिलिटेर ओवर यूनिट vergoeden militaire lokke vergoeding chahi pawe ke aur batawe meer dan 1700 sikan hega door gratis school maaltijden indonesië indonesium jo so so madmi khai baatat raha 1700 admi hua bimar hai nani ab pata na hai indonesia mein kaun khai aise dhardi se wo hai medan yafa mein ben suriname heeft kennis genomen en genoeg maar mismoed om bestuurscultuur te verandering तो बहुत बहुत समाचार है जो आप लोग को मियां दिखाई दिए है कि कैसे कैसे तोरिया है रेक्टर्स अमेरिका के वेकर चुरी लेते फरवेदर इन द साक लिंसली क्लेंसी के बारे में तो एक बारे में बता रही और तिब्बत में भैया जो ओवर स्ट्रोमिंग भइल हैगा नेपाल में खस्ती खाना एनन देर तक भैया एनन देर तक और आदमी आइले ओक वर्दन ऑफ 531 मेंशन फरमेस तिब्बत Chinoa ke des me ba Chinese media maakte eerder nog melding van 21 omgekopen slachtoffer Terraso en me door marge he hajaran personen worden nog vermist mare janta to ye sab maant hai Chinoa des ke aur Sri Lanka ke ki utra admi hua pe aur maral bhaiya Brussels trek nog 500.000 euro uit voor hulp van Nepal 500.000 euro Brussels op पठाएगा का बोले हैगा नेपाल में हुआ हेल्प करे के और जो उतरा स्लख तो फरसुआ भैले उतरा आदमी हुआ मरल हैगा हुतुस रखेरेंग रूपन तक तक
ruim 80 doden bij gevechten tussen Hutu en regering. Toen in Afrika met Gujaga Hutu he, hoe go volk he, regeringleider se guerrilla is op he, al ladi se, otra admi, maral hega. Bataan wij Denemarken, Kabul hebben via 2027 naar terugkeercentrum buiten Europa. Jane en miljoen door aanwee migranten. Bataan wij gegen verwachten in 2027 mee klaar te zijn om migranten die niet in het land mogen blijven uit te zetten via een zogenaamd terugkeercentrum buiten de Europese Unie. We hebben grote vooruitgang geboekt met de oprichting van het terugkeercentrum buiten de EU en zijn nu dichtbij dan ooit tevoren, zei minister van Immigratie en Integratie. Bolle in de verklaring vanuit Denemarken verwachten we eind volgende jaar klaar te zijn om de eerste buitenlanders naar de partnerland te sturen. Op Bolle vier andere landen waaronder in Nederland hebben soortgelijke plannen ontmoet zijn ambtenaren. Ambtgenoten uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland vrijdag in Kopenhagen. Kijk er maar mee. Samen jaiga batiai bhaiya aise batiya hai hamare nani. To jaise jaise rahega aap log ko hum bas apna samachar batate hi rahenge.

और हमारे यारो गुलाबी आंखें जो है ये मॉरीशियस के लोग की इस तरह से गाते हैं। तो हम आज आप लोग को सुनाते हैं, हम चलते हैं उमेश महावीर की ओर और वो भी कुछ सुनाएंगे और तितल है मितवा।

और मितवा उमेश मोहाबीर का ये सॉन्ग, उसके बाद हम चलते हैं कुछ लोकल सॉन्ग हम आपको भी सुनाएंगे हमारे सुनने वालों। और ये लोकल सॉन्ग हम मॉरिशस के आप लोग को हम सुनाएंगे। तो हम चलते हैं संजीव बुलाओ तोर हमार लंबूर।

चोर की न चाहिए हमारे यारो। तो दोस्तों जैसे बताए गए हैं हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है कैनच सालिक की ओर हम चलते हैं। एगो चटनी सोका लेकर ये आती है। और बोले स्टॉप ड्रिंकिंग और क्या क्या भैया, हमें गीत की जरूरी है।

और तुके दिखली हम तो बोले हम बहुत खुशी हुई गईली। तो ये सब भोजपुरी सॉन्ग हम आप लोग को रेडियो फाहुन के माध्यम से सुनाते हैं हमारे यारो। उसके बाद में हम और एक लेकर चलती है, ये कामना के कोनो गीत है भैया, आओ मिलकर सुना जाए।

हम सुनाते हैं वो सिर्फ रेडियो फाहुन के माध्यम से सुनते दोस्तों। हम अगला गीत की ओर चलते हैं, वो भी एक भोजपुरी सॉन्ग है मॉरिशियस का।

बुल के ओकर पारो के और ओकर सब के कौन बालमा ओके भरमावे है। हमारे यारो तो ये गीत आपको हमने सुनाया है तो उसके बालमा के यानी पारो के कौन बालमा भरमावे है। तो अब हम चलते हैं अगला ओ बालमा की ओर।

अपने बलमान से मांगे हैं, तो बलमान बोले हम जब ना लावे तो दूसर दुल्हनिया ले आवे, तो औरतिया बोले नहीं बलमान हम ही के तू ले ले। तो ये सब गीत आपको सुनने को मिलता है भोजपुरी जोन से। दोस्तों एक और हम आपको सुनाते हैं।

और दोस्तों आज कुछ चटनी सोका हम चलाएंगे, कुछ गयाना क्या और कुछ सुरीनाम के भी चटनी चलाएंगे, और यानी कि त्रिनिदाद के बाद हम चलते हैं कविता रामकिशुन।

दोस्तों विकारी सिंह का ये है ये गीत हमारे यारों। उसके बाद में हम जाते हैं और आगे को, और वो है पर्वत पांचू की ओर।

0: छोड़ो
1: देखा दिल न तोड़ो
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मिलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो।

ले ले मजा मत भरे राग से, क्या जाने कल क्या होगी इन बहारों की अदा, क्या जाने कल क्या होगी इन बहारों की अदा। ऐ दिल तू न डर इस जहान से, ऐ दिल तू न डर इस जहान से।

0: इस जहान से, है दिल तो नजर इस जहान से।
1: अभी सर उठाने का मजा मिल जाएगा, आने दे पुलिस वाले को।
2: पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो
3: मैं बुला दूं।

ले ले मजा मजबरे राग से, क्या जाने कल क्या होगी इन बहारों की अदा, क्या जाने कल क्या होगी इन बहारों की अदा। ऐ दिल तू न डर इस जहान से, ऐ दिल तू न डर इस जहान से।

सुबह के कदम कह रहे हैं तुझे, बढ़ते रहे जिंदगी के नशे, बह के कदम कह रहे हैं तुझे, बढ़ते रहे जिंदगी के नशे।

0: जहान से, दिल तू नजर इस जहान से।
1: अभी सर उठाने का मजा मिल जाएगा, आने दे पुलिस वाले को।
2: पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो मैं बुला दूं।